सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत कर हा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की किसान भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी गए हा कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो किसान भाई बहन आज अमारी आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे खेतर में निराई गुड़ाई हरते कर ने अपने जीवन में अपने हलमा ने महत्व ने हरते समझी शक। तो किसान भाई बोन अणो विषय माते अमारी आप तक कार्यक्रम खेतीवाड़ी में घना कनी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरावी दा गीत ने मोरे करा अपनी वाते। तो किसान भाई बोन आप हमवरते रेजू आपणो रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बच्चों को सही बैठने और चलने की

0: आदत क्यों सिखानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि अक्सर हम बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और खानपान पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके बैठने, खड़े होने और चलने का तरीका भी उनके शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बचपन वह समय है जब शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और रीढ़ की हड्डी लगातार विकसित हो रही होती है। यदि इस समय बच्चों की बैठने की या चलने की आदत गलत हो जाए तो आगे चलकर कमर दर्द, गर्दन दर्द, झुके हुए कंधे, रीढ़ की समस्या और थकान जैसी परेशानी सामने आ सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, बच्चों को सही बैठने और चलने की आदत क्यों सिखानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में मोबाइल, टीवी और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चे लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। कई बच्चे पढ़ते समय झुक कर बैठते हैं तो गर्दन नीचे करके मोबाइल भी देखते हैं। और साथ ही श्रोता साथियों, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुर्सी पर गलत तरीके से बैठते हैं। शुरुआत में तो श्रोता साथियों ये बात बहुत ही सामान्य लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत शरीर की बनावट और स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है।
1: जी हाँ, यही बात करें कशिश कि सही मुद्रा में बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है और शरीर का संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इससे बच्चा पढ़ाई के समय अधिक देर तक बिना थके ध्यान लगा सकता है। वहीं गलत मुद्रा में बैठने से श्रोता साथियों कमर दर्द और कंधों में दर्द, जल्दी थकान, एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ कशिश, चलने की सही आदत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब बच्चा सीधे शरीर के साथ संतुलित कदमों से चलता है तो उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सही तरीके से विकसित होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: सही चाल आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, और इसके विपरीत झुक कर चलना, पैरों को घसीटना या शरीर का संतुलन बिगाड़ कर चलना आगे चलकर शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के लिए पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था करें जहां मेज और कुर्सी की ऊंचाई बच्चों के अनुसार हो। यदि बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ता है तो उसके बैठने की मुद्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। लगातार एक ही स्थिति में बैठने की बजाय हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा चलना, खिंचाव वाले हल्के व्यायाम करना और शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो इसमें विद्यालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिक्षक समय समय पर बच्चों को सही तरीके से बैठने, स्कूल बैग दोनों कंधों पर टांगने, चलते समय शरीर सीधा रखने और खेलकूद के महत्व के बारे में समझा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: छोटी छोटी आदतें भविष्य में बड़े लाभ देती है साथियों। ऐसे में अंजलि जी, माता पिता को बच्चों को नियमित योग, स्ट्रेचिंग और हल्की शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन जैसे जो सरल योगासन होते हैं वो रोजाना बच्चों को करवाने चाहिए। साथ ही रोजाना खुलकर खेलना शरीर की मुद्रा को बेहतर बनाने में बच्चों की मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, बच्चों का स्क्रीन टाइम आप सीमित रखें, क्योंकि लंबे समय तक मोबाइल या फिर टेबलेट देखने से गर्दन और पीठ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अंजलि जी, यदि माता पिता स्वयं सही तरीके से बैठते हैं, चलते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से वही आदतें अपनाएंगे।
1: जी हाँ। यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगी कि सही बैठने और चलने की आदत केवल अच्छे शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बच्चों के स्वस्थ शरीर, मजबूत आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की आधारशिला भी है।
0: बिल्कुल।
1: बचपन में सीखी गई ये छोटी सी आदत श्रोता साथियों उन्हें जीवन भर स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि हम श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि बच्चों के सही बैठने की मुद्रा पर हमें किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चों का स्वस्थ भविष्य केवल अच्छे भोजन, अच्छी शिक्षा और नियमित खेल कूद से नहीं बनता, बल्कि उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से भी बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही तरीके से बैठना, खड़े होना और चलना ऐसी ही आदतें हैं जो देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन इनका प्रभाव जीवन भर दिखाई देता है।
1: जी हाँ।
0: यदि बचपन में शरीर को सही मुद्रा में रखने की आदत विकसित हो जाए तो आगे चलकर कई शारीरिक समस्याओं से बचाव संभव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और बच्चा अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और स्वस्थ जीवन जी सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी। साथी श्रोता साथियों, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि सही मुद्रा केवल शरीर की सुंदरता के लिए नहीं बल्कि शरीर के संतुलित विकास के लिए भी जरूरी है। जब बच्चा सही तरीके से बैठता है तो उसकी रीढ़, गर्दन, कंधे और मांसपेशियां अनावश्यक दबाव से बची रहती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे वह पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में अधिक ध्यान लगा पाता है। दोस्तों, जल्दी थकता भी नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि गलत आदतें धीरे धीरे शरीर पर ऐसा असर डाल सकती है जिसका पता बच्चों को कई वर्षों बाद पता चलता है।
0: जी जी।
1: इसलिए अंजलि जी, समय रहते ही सही आदतें सिखाना भी सबसे बड़ा बचाव हो सकता है बच्चों के लिए।
0: बिल्कुल कशिश, आज के डिजिटल दौर में यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर का बढ़ता उपयोग बच्चों की बैठने की आदत को प्रभावित कर रहा है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, परिवार और विद्यालय दोनों मिलकर बच्चों को यह समझाना होगा कि तकनीक का उपयोग करें लेकिन अपने शरीर की देखभाल को कभी न भूलें।
1: बिल्कुल।
0: पढ़ाई के बीच छोटे छोटे विराम लेना, नियमित व्यायाम करना, खुलकर खेलना और सही मुद्रा में बैठने का अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई में अच्छे अंक लाना।
1: जी हाँ।
0: माता पिता और शिक्षक यदि बच्चों को बार बार टोकने के बजाय कशिश प्यार से समझाएं, स्वयं सही उदाहरण प्रस्तुत करें और अच्छी आदतों की सराहना करें तो बच्चे इन्हें सहज रूप से अपना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए कि बचपन में सीखी गई अच्छी आदतें किसी पाठ्य पुस्तक के अध्याय की तरह नहीं होती बल्कि जीवन भर साथ रहने वाली पूंजी बन जाती है।
1: जी हाँ।
0: हम अपने बच्चों को ऐसा वातावरण दें जहाँ वे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की सही शैली भी सीखें। उन्हें ये एहसास कराएं श्रोता साथियों कि शरीर हमारा सबसे अनमोल साथी है।
1: बिल्कुल।
0: और उसकी देखभाल छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होती है। जब बच्चे सही बैठने, सही चलने और अपने शरीर का सम्मान करने की आदत सीख जाते हैं तब वे केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले पूरे जीवन के लिए स्वस्थ, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और सक्षम बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यही एक सशक्त बचपन, स्वस्थ युवा और जागरूक समाज की सबसे मजबूत पहचान होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से साथियों को कहना चाहेंगे कि दोस्तों, बच्चों का व्यक्तित्व केवल उनके ज्ञान, प्रतिभा या अंकों से नहीं पहचाना जाता बल्कि उनकी जीवन शैली, आत्मविश्वास और स्वस्थ आदतों से भी पहचाना जाता है। सही बैठने और चलने की आदत ऐसी एक अनमोल सीख है अंजलि जी, जो बच्चे को बचपन से ही अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाती है।
0: जी हाँ।
1: यह आदत उसे यह समझाती है कि शरीर की देखभाल किसी बीमारी के बाद नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी सावधानियों से शुरू होती है। जब बच्चा सही मुद्रा में बैठना और चलना सीखता है साथियों, तो उसके भीतर अनुशासन, सजगता और आत्मसम्मान का भी विकास होता है।
0: बिल्कुल।
1: वह अपने शरीर की जरूरतों को समझने लगता है और धीरे धीरे ऐसी जीवन शैली अपनाता है जो उसे लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखती है। यही आदत श्रोता साथियों आगे चलकर खेल, पढ़ाई, नौकरी और दैनिक जीवन में उसकी कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाती है।
0: जी जी।
1: स्वस्थ शरीर में ही आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक सोच का विकास होता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को केवल यह न बताएं कि क्या सही है बल्कि उन्हें यह भी समझाएं कि सही आदतों का महत्व क्या है।
1: बिल्कुल।
0: यदि घर में माता पिता, दादा दादी और विद्यालय में शिक्षक स्वयं शारीरिक मुद्रा अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और बच्चों को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें तो बच्चे बिना किसी दबाव के इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे।
1: बिल्कुल।
0: सीख वही सबसे गहरी होती है जो व्यवहार में दिखाई देती है। श्रोता साथियों, हम मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चों को स्वस्थ रहने की शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि घर, विद्यालय और समाज के व्यवहार में भी मिले।
1: जी
0: उन्हें
1: हाँ।
0: खुलकर खेलने का अवसर दें, स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाला समय सीमित करें, नियमित योग व्यायाम के प्रति प्रेरित करें और हर दिन यह याद दिलाएं कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल।
0: बचपन में डाली गई अच्छी आदत आने वाले पूरे जीवन का आधार बन सकती है। यदि कशिश आज हम बच्चों को सही बैठना, सही चलना और अपने शरीर का सम्मान करना सिखा देंगे तो कल वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक सक्षम बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक स्वस्थ आत्मविश्वासी जागरूक पीढ़ी का निर्माण किसी बड़े अभियान से नहीं बल्कि घर परिवार में सिखाई गई ऐसी छोटी छोटी आदतों से बनता है। श्रोता साथियों, यही आदतें आगे चलकर उन्हें जीवन की हर राह पर मजबूती, संतुलन और सफलता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगी।
1: बिल्कुल अंदिले जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतीनु खवानु सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि हम केवल कमियों को न देखें।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि कशिश हम देखते हैं कि आज के दौर में अक्सर हम किसी व्यक्ति से मिलते ही उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। कोई थोड़ा देर से आया, कोई काम में गलती कर बैठा, किसी की बोलने की शैली अलग है या किसी का स्वभाव हमारी पसंद जैसा नहीं है, हम उसकी एक कमी देखकर उसके सारे गुण भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोताओं, क्या कभी हमने सोचा है कि क्या कोई इंसान पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है? शायद नहीं। तो आज इसी विषय पर हम खुलकर बात करेंगे कि केवल कमियां ना देखें।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में किस्संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें?
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें केवल लोगों की कमियां नहीं देखनी है। जैसा कि जागृति जी, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाइयां और कमियां दोनों होती है।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी में नेतृत्व करने की क्षमता होती है तो कोई बहुत मेहनती होता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई दूसरों की मदद करने में आगे रहता है तो कोई अपनी रचनात्मक सोच से समाज को नई दिशा देता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ कमियां भी हर किसी में होती है जागृति जी। इसलिए यदि हम केवल कमियों पर ध्यान देंगे तो शायद श्रोता साथियों, हमें दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी एक गलती से नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व से तय होता है।
1: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं सोचिए, अगर हर बार कोई आपकी सिर्फ गलतियां ही बताए और कभी आपकी मेहनत या अच्छाई की सराहना ना करे तो कैसा लगेगा। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है कशिश, परिवार हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो या समाज। जहाँ केवल आलोचना होती है वहाँ विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि रिश्तों की मजबूती इस बात में नहीं कि हम एक दूसरे की गलतियां गिनाएं, बल्कि इस बात में है कि हम एक दूसरे को समझे और आगे बढ़ने में सहयोग करें।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के हमारी सोच ही हमारी पहचान बनती है। अगर हम हर व्यक्ति में अच्छाई खोजने की आदत डाल लें तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: सकारात्मक सोच केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं वे जीवन में बहुत अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथी श्रोता साथियों, याद रखिए कि गलती करना इंसान की फितरत है। कोई भी व्यक्ति जन्म से सब कुछ सीख कर नहीं आता जागृति जी। यदि कोई गलती करता है तो उसे हमेशा दोष देने के बजाय हमें उसे सीखने और सुधारने का मौका देना चाहिए साथियों।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी सी प्रेरणा, एक अच्छा सुझाव और थोड़ा सा विश्वास किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है। और देखा जाए तो यही सच्ची इंसानियत है। दोस्तों, दूसरों की कमियां देखना वैसे तो आसान है लेकिन अपनी कमियों को पहचानना थोड़ा कठिन है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम रोज कुछ मिनट अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर विचार करेंगे जागृति जी, तो हम ऐसा पाएंगे कि हमें भी बहुत कुछ सीखने और सुधारने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: जब इंसान खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है साथियों, तब उसे दूसरों की कमियां कम दिखाई देने लगती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, एक सच्ची तारीफ किसी व्यक्ति के अंदर नया आत्मविश्वास जगा देती है। कभी किसी छात्र की मेहनत की सराहना कीजिए श्रोताओं, किसी सहकर्मी के अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए।
0: जी हाँ,
1: या घर में किसी सदस्य के प्रयास को सम्मान दीजिए। हम देखेंगे कि वह व्यक्ति पहले से और अधिक उत्साह के साथ काम करेगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ सुझाव दे, लेकिन जहाँ अच्छा ही दिखे वहाँ खुलकर प्रशंसा भी करें। हर व्यक्ति का अनुभव, परिवेश और सोच अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जो हमें सही लगे वही हर किसी के लिए सही हो। मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मतभेद को कमी समझ लेना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीख जाते हैं तब हमारा व्यक्तित्व और भी परिपक्व बन जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में श्रोता साथियों, हमें टीम वर्क में गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई सामाजिक कार्य हो, हर जगह टीम वर्क की तो आवश्यकता होती ही है जागृति जी। एक अच्छी टीम वही होती है जहाँ लोग एक दूसरे की कमियों पर नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। जब हर सदस्य की ताकत को साथियों पहचाना जाता है तब सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, कई बार हमें किसी की गलती दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी परिस्थिति भी हम नहीं देखते। हो सकता है कि वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहा हो या किसी कठिन दौर में हो। यदि हम उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी सोच में संवेदनशीलता आएगी और साथ ही सहानुभूति जो है वो हमें बेहतर इंसान बनाएगी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी के अंदर कमियां नहीं देखनी है। ये बातें ऐसी ही आगे चलती रहेंगी लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि हमें किसी के अंदर कमियों को नहीं देखना चाहिए, जैसा कि श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग हर परिस्थिति में अच्छाई खोज लेते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे लोग अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। जीवन में खुश रहने का एक आसान तरीका यही है कि कमियों के साथ साथ अच्छाइयों को भी देखने की आदत हमें विकसित करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ कमियां जरूर होती है और कुछ खूबियां भी होती है। अगर हम केवल कमियां ही देखते रहेंगे तो अच्छे रिश्ते, अच्छी टीम और अच्छा समाज कभी नहीं बना पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अगर हम अच्छाइयों को पहचानेंगे कशिश, लोगों को सुधारने का अवसर देंगे, उनकी परिस्थितियों को समझेंगे और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे तो न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरेगा बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर बनेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जैसा कि सोशल मीडिया के दौर में लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपनी कमियां गिनने लगते हैं, लेकिन जागृति जी, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करने से श्रोता साथियों आत्मविश्वास घटता है, जबकि प्रेरणा लेने से आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा साथियों को अपनी क्षमता को पहचान कर जागृति जी स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों को ही प्रशंसा के पात्र मानते हैं, जबकि किसी के समय पर काम करना, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाना, दूसरों की मदद करना या मुस्कुराकर बात करना भी बड़ी अच्छाइयां होती हैं। जब हम छोटी अच्छाइयों को महत्व देंगे साथियों, तो समाज में सकारात्मकता बढ़ेगी।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की प्रगति केवल कमियां खोजने से नहीं बल्कि अच्छाइयों को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने से होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन महान तो वही बनता है जो दूसरों की कमजोरियों पर नहीं, उनकी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास करता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम आलोचना के स्थान पर सहयोग, निराशा के स्थान पर प्रेरणा और दोष देखने के बजाय गुणों को अपनाने की आदत विकसित करेंगे तो परिवार में प्रेम, समाज में सौहार्द और राष्ट्र में विकास का वातावरण अपने आप ही निर्मित होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, किसी की कमियों का उपहास हमें नहीं उड़ाना है बल्कि उसकी अच्छाइयों को पहचानकर उसे आगे बढ़ने का अवसर देना है। क्योंकि दुनिया बदलने की शुरुआत दूसरों की कमियां गिनने से नहीं हुई है बल्कि उनकी खूबियों को सम्मान देने से होती है, और यही सकारात्मक सोच, सच्ची मानवता और एक सशक्त, संवेदनशील तथा विकसित भारत की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि कई बार हम किसी व्यक्ति के पहनावे, भाषा या फिर आर्थिक स्थिति को देखकर और पहली मुलाकात के आधार पर ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। यह पूर्वाग्रह श्रोता साथियों हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। ऐसे में किसी को समझने के लिए समय दे और उसके व्यवहार को आप जाने।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हर व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है तो कोई सफाई कर्मी। हर व्यक्ति साथियों अपने अपने क्षेत्र में समाज के विकास में योगदान देता है।
0: जी हाँ।
1: यदि केवल हम कमियां देखेंगे जागृति जी, तो उनके योगदान का सम्मान करना हम भूल जाएंगे। साथियों याद रखिए कि जहां लोगों की मेहनत की सराहना होती है, वहां नए विचार जन्म लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और लोग खुलकर काम करते हैं। ऐसे में परिवार, विद्यालय, कॉलेज और कार्यस्थल पर ऐसा वातावरण बनाना हमारे युवा साथियों की ही जिम्मेदारी बनती है।
0: जी हाँ कशिश, और इससे ये स्पष्ट भी हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र की उन्नति केवल कमियां खोजने से नहीं बल्कि अच्छाइयों को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और कमियों को मिलकर दूर करने से होती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है, वो न केवल अपने रिश्तों में दूरी पैदा करता है बल्कि स्वयं भी नकारात्मकता का शिकार हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: इसके विपरीत श्रोता साथियों, जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को पहचानता है, उनकी सराहना करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रेम पूर्वक उनकी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में समाज का निर्माता बनता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की संस्कृति ने लोगों को आलोचना करने में तेज और प्रशंसा करने में संकोच बना दिया है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में कशिश, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अगर हम अपने परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में लोगों की अच्छाइयों को देखने और उन्हें आगे बढ़ाने की आदत विकसित कर लेंगे श्रोताओं, तो विश्वास, सहयोग, आत्मीयता और आपसी सम्मान का वातावरण अपने आप निर्मित होगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था।
1: बिल्कुल,
0: और यही वातावरण स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: जी हाँ जागृति जी, हमारे युवा साथियों को ये ध्यान में रखना है कि हीरे की पहचान उसकी चमक से होती है साथियों, न कि उसकी धूल से।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है यदि हम केवल कमियां देखते रहेंगे दोस्तों, तो अच्छे इंसानों को भी हम खो देंगे। लेकिन यदि हम अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और कमियों को सुधारने में सहयोग देंगे, तो हम न केवल बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी करेंगे।
0: जी हाँ,
1: आज से श्रोता साथियों, आप सभी मिलकर ये संकल्प लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी एक गलती से नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व, उसके प्रयास और उसकी अच्छाइयों से पहचानेंगे। यही सोच हमारे जीवन, रिश्तों और समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आप स्वयं वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसीलिए श्रोताओं, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा हमें स्वयं से करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: जब हम दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने व्यवहार का आत्म मंथन करेंगे, तब हमारे शब्दों में मधुरता होगी, विचारों में सकारात्मकता होगी और कर्मों में संवेदनशीलता दिखाई देगी।
1: बिल्कुल,
0: यही सच्चे चरित्र, श्रेष्ठ नागरिकता और मानवता की पहचान है। इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि जो समाज कमियां गिनने के बजाय खूबियां पहचानना सीख जाता है, वही समाज प्रगति, सद्भाव और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए, कमियां निकालना आसान है लेकिन खूबियां पहचानना महानता है।
1: जी हाँ,
0: जो दूसरों में अच्छाई खोज लेता है कशिश, वही स्वयं भी महान बन जाता है और वही एक बेहतर समाज तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण का वास्तविक आधार बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर सुनवाते हैं साथियों को एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: में फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विषय है गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल है। श्रोताओं, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन की कहानी लिखते हैं।
0: जी हाँ
1: अंजलि, यही बात गाँव के विकास पर पूरी तरह से लागू होती है। किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसके गाँव में बसती है। अगर गांव जागरूक, आत्मनिर्भर और संगठित होंगे तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। परिवर्तन हमेशा किसी बड़ी योजना या भारी निवेश से नहीं आता, बल्कि कई बार एक छोटी सी शुरुआत पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देती है। दोस्तों, एक व्यक्ति का सकारात्मक कदम, कुछ युवाओं का सहयोग, महिलाओं का आत्मविश्वास या बच्चों की जागरूकता पूरे समाज में नई ऊर्जा का संचार कर

0: करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ।
0: और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, हमारा भारत देश गाँव का देश है। आज भी करोड़ों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अगर प्रत्येक गांव अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने का प्रयास करेगा और छोटी छोटी पहलों को जन आंदोलन बना दे तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि आज गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल केवल एक विषय नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य की दिशा है।
1: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि गाँव में एक परिवार स्वच्छता अपनाए तो धीरे धीरे पूरा मोहल्ला प्रेरित होता है। यदि एक किसान नई तकनीक अपनाता है तो अन्य किसान भी उससे सीखते हैं। यदि एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाती है तो अनेक महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसका मतलब है श्रोता साथियों कि छोटी पहल इसलिए प्रभावी होती है क्योंकि उसमें लोगों की भागीदारी होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब लोग स्वयं परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं तब विकास स्थायी बनता है।
0: जी हाँ अंजलि, कई गांवों में लोगों ने ये केवल संकल्प लिया है कि वे अपने घरों और गलियों में कचरा नहीं फैलाएंगे। शुरुआत कुछ लोगों ने की लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव स्वच्छता अभियान से जुड़ गया।
1: जी जी।
0: इसके परिणाम स्वरूप श्रोता साथियों, गाँव में बीमारियां कम हुई, साफ वातावरण बना, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा, गाँव की सुंदरता बढ़ी, बाहर से आने वाले लोग भी प्रभावित हुए।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी सी आदत ने पूरे गाँव की पहचानी बदल दी।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने है।
0: बिल्कुल,
1: कई गांवों में लोगों ने वर्षा जल संग्रहण, तालाबों की सफाई, चेक डैम निर्माण और पुराने कुओं के संरक्षण की शुरुआत की। शुरुआत में यह कार्य सभी को छोटा लगा।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कुछ वर्षों बाद सभी ने देखा कि बदलाव आया। भूजल का स्तर बढ़ा, किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिली, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध हो पाया, खेत की पैदावार बढ़ी और पलायन कम हुआ। श्रोता साथियों, यह सब हमें दिखाता है कि पानी बचाने की छोटी पहल पूरे गांव का भविष्य बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं जागृति जी कि कई ग्रामीण महिलाओं ने मिलकर छोटी बचत शुरू की है। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा की और स्वयं सहायता समूह बनाया। समय के साथ श्रोता साथियों, महिलाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, सिलाई, डेयरी, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प का काम बढ़ा, परिवार की आय भी बढ़ी और जागृति जी, महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत हुआ।
0: जी हाँ।
1: बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आया। एक छोटी सी बचत ने पूरे परिवार और समाज में आर्थिक बदलाव ला दिया।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज का युवा गांव की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कुछ युवा मिलकर पुस्तकालय शुरू करें, खेल प्रतियोगिता आयोजित करें, डिजिटल शिक्षा दे या नशा मुक्ति अभियान चलाए तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: युवा आजकल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बुजुर्गों की सहायता कर सकते हैं, डिजिटल सेवाओं की जानकारी दे सकते हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण अभियान भी चला सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे युवाओं की छोटी पहल भविष्य की बड़ी उपलब्धि बन सकती है।
1: जी हाँ, यदि गाँव के कुछ शिक्षित लोग भी जागृति जी प्रतिदिन एक घंटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं तो अनेक बच्चों का भविष्य बदल सकता है। ऐसी पहल से हम देखेंगे कि शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। विद्यालय छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या घटेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि ज्ञान का छोटा दीपक भी पूरे गांव को रोशन कर सकता है। इसी के साथ जैविक खेती और नवाचार बढ़ेगा। श्रोता साथियों, कुछ किसानों ने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया है।
0: बिल्कुल,
1: प्रारंभ में लोगों को संदेह था लेकिन धीरे धीरे अच्छे परिणाम सामने आए। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी, उत्पादन की गुणवत्ता सुधरी, किसानों को जागृति जी बेहतर मूल्य मिलने लगा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हुआ और पर्यावरण सुरक्षित रहा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक किसान की पहल ने पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल बन सकती है, ये बातें निरंतर हमारे आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं और गीत से पहले हमने जाना कि गांव की छोटी पहल किस तरीके से बड़े बदलाव की मिसाल बन सकती है। इसमें हम जान पाए जागृति जी, स्वच्छता के बदलाव की शुरुआत, जल संरक्षण की छोटी पहल, साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह की शक्ति, युवाओं की सकारात्मक उसमें भूमिका, शिक्षा के क्षेत्र में छोटी शुरुआत, जैविक खेती और नवाचार को लेकर। यहीं अब बात करें डिजिटल गांव की ओर कदम की, तो श्रोता साथियों, आज डिजिटल तकनीक ग्रामीण विकास का नया माध्यम बन रही है। यदि गांव में ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन की शुरुआत हो जाए तो लोगों का समय और धन दोनों बचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल जागरूकता ग्रामीण जीवन को सरल और आधुनिक बना रही है।
1: जी हाँ अंजलि, गांव तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। श्रोताओं, सामूहिक प्रयासों से ही हम कार्य को आगे कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास में आता है श्रमदान करना, वृक्षारोपण करना, सफाई अभियान चलाना, सड़क निर्माण का कार्य करना, अपने आसपास में विद्यालय हो तो उसका सुधार करना, जल संरक्षण करना, ये कार्य शामिल हो सकते हैं सामूहिक में। जब पूरा गांव एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है अंजलि, तब विकास कई गुना तेज हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर प्रत्येक परिवार हर वर्ष एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ वर्षों में पूरा गांव हरियाली से भर सकता है।
0: जी जी।
1: इससे हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, वर्षा में वृद्धि मिलेगी, तापमान में कमी भी नहीं होगी, जैव विविधता का संरक्षण बना रहेगा और सुंदर वातावरण मिलेगा। कहा गया है कि छोटा पौधा भविष्य का विशाल वृक्ष बनता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ गाँव के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक रहने की जरूरत है। गांव में यदि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, टीकाकरण, पोषण, योग को अपनाएं तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, हर गांव में कुछ विशेष संसाधन होते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, वन उत्पाद, पारंपरिक कला। यदि जागृति जी ने सही दिशा मिले तो रोजगार बढ़ता है, पलायन कम होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, कल्पना कीजिए कि कैसे गांव की जहां कुछ युवाओं ने ये निश्चय कर लिया हो कि वे हर रविवार को 2 घंटे श्रमदान करेंगे। शुरुआत में केवल 10 लोग आए, उन्होंने गांव के तालाब की सफाई की, पौधे लगाए और बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाया।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर स्थानीय उत्पाद तैयार किया, किसानों ने वर्षा जल संरक्षण और जैविक खेती अपनाई। कुछ वर्षों में वही गांव स्वच्छ, हरित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बन गया। आसपास के गांव उसके अनुभव से सीखने लगे। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है बल्कि निरंतर छोटे प्रयासों से आता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसा कि अभी हमने आपको कहा था कि अगर हम कल्पना भी करते हैं ऐसे गांव की तो हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, और जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो हम आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि हमारा गांव कितना अच्छा बन जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: छोटी पहलों के सामने चुनौतियां बहुत सारी आती हैं। कोई भी कार्य करने जाते हैं, उस कार्य को करने से पहले चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है।
0: जी जी।
1: लेकिन दोस्तों, उन चुनौतियों को पार करते हुए हम किसी कार्य को कर लेते हैं तो वो हमें और ज्यादा खुशी देता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि हम छोटी छोटी कोई पहल कर रहे हैं, उसके लिए हमें लोगों की उदासीनता देखनी पड़ती है, आर्थिक संसाधनों की कमी भी हमारे पास होती है, जागरूकता का अभाव भी रहता है, हम लोगों को इतना जागरूक नहीं कर पाते, समझा भी नहीं पाते हैं, नई सोच का लोग हमसे विरोध भी करते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी का भी हमारे सामने अभाव रहता है, और साथ में युवाओं का पलायन। इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक सहयोग, सकारात्मक नेतृत्व और निरंतर प्रयासों से ही संभव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, युवाओं को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं हैं, बल्कि समाज बदलने वाले भी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि हर युवा अपने गांव के लिए वर्ष में कुछ दिन भी सेवा करे तो विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है। युवा को सिर्फ इतना ही करना है कि एक पौधा लगाए, एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एक परिवार को डिजिटल बना सकते हैं, एक जल स्रोत बचा सकते हैं, एक व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही छोटे कार्य जागृति जी बड़े बदलाव का आधार बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, महात्मा गांधी का स्वराज जो है उसका सपना तभी साकार होगा जब गांव अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजेंगे। आत्मनिर्भरता, सहयोग, स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व, ये सभी छोटी छोटी पहले मिलकर सच्चे स्वराज की मजबूत नींव बनाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब गांव अपने संसाधनों का सम्मान करेंगे जागृति जी, अपनी संस्कृति को सहेजेंगे और आधुनिक सोच को अपनाएंगे, तभी वास्तविक विकास संभव होगा।
1: जी अंजलि, परिवर्तन किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वो निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा होता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, गांव की एक साफ गली, एक बचाया हुआ तालाब, एक लगाया गया पौधा, एक शिक्षित बच्चा, एक आत्मनिर्भर महिला, एक जागरूक किसान और एक जिम्मेदार युवा, ये सभी मिलकर अंजलि विकास की ऐसी कहानी लिखते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज आवश्यकता किसी चमत्कार की नहीं दोस्तों, बल्कि जागरूक नागरिकों की है। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि वो अपने गांव के लिए प्रतिदिन एक छोटा सा सकारात्मक कार्य करेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का हर गांव आत्मनिर्भर, शिक्षित, स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त होगा।
0: जी हाँ,
1: यही छोटे प्रयास बड़े बदलाव की सबसे सुंदर मिसाल बनेंगे और यही सच्चे अर्थों में विकसित भारत तथा सच्चे स्वराज की और हमारा सबसे मजबूत कदम होगा।
0: बिल्कुल शाकृति जी, कह सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि अपने गांव की छोटी पहल से होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हर हाथ जिम्मेदारी उठाता है, जब हर गांव विकास की नई इबारत लिखता है और वही इबारत आगे चलकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम

0: से हमने बहुत सारी बातें की। हमारे श्रोता साथियों को हमने बताया कि किस तरह गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल बनती है।
1: जी जी,
0: आप देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिये हैं, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावरी अमर हित बुन ने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम होवी बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में
1: होवे बोनो लेने हाजिर थी गया हूँ कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज आपने बोनो तक की कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है कि आपड़ी बोनो नी आवाज घर तक लेने ग्राम सभा उदी हरते ई उगाड़ी सके केम के आपड़े देखो हो के हर घर में आपड़ी जे बोने रहे हैं ई परिवार नी हित्ती जरूरत तकी जोड़ी तकी रहे हैं ई सोरनी शिक्षा परिवार ना स्वास्थ्य पानी नी समस्या स्वच्छता पोषण खेती पशुपालन ने घर में खर्च हरते करवो है ई हंगरी जिम्मेदारी ई निभावे है पण जई वक्त गांव ना विकास नी योजना नी वात आवे ते एणनी जे आवाज है ई उठली मजबूती तकी हमराती नती आज सवाल आपड़ा ने आ होसवा में मजबूर करे है कि आपड़ी जे बोने ही एणनी आवाज केवल घर नी चार दीवारी में सनी बल्कि आपड़े ग्राम सभा उदी आपड़े हरते पुगाड़ो ने आ केम जरूरी है
0: होवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपड़े बोने खती घणा काने वाते रिंगा अबर हमड़ा अगीत ने मोरे कर आपड़ी वाती
1: होवे तो बोनो आप हमर तो रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारा सा विषय हमारे साथ जुड़ता है। तो आज भी कार्यक्रम में हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। आज हम बात करेंगे लक्ष्य तय करने की कला को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है। हर किसी के मन में कोई न कोई सपना भी जरूर होता है। कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है साथियों, तो कोई डॉक्टर, तो कोई खिलाड़ी, तो कोई समाज में कुछ नया करने का सपना देखता है। लेकिन श्रोता साथियों, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या केवल सपना देखना ही काफी है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। लेकिन श्रोता साथियों, सच तो यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक सही दिशा की जरूरत होती है, और वह दिशा हमें मिलती है लक्ष्य तय करने से। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे लक्ष्य तय करने की कला के बारे में। तो साथियों, बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं हम कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू करा दिया था और बातचीत की हमारी शुरुआत हो गई थी। हर किसी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और हर कोई जीवन में कुछ बनना चाहता है। तो यही सबसे पहले हम जानते हैं कि लक्ष्य क्यों जरूरी है। साथियों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो उसका जीवन बिना दिशा के होता है। जरा सोचिएगा श्रोता साथियों, कि अगर कोई यात्री यात्रा पर निकले और अगर उसे पता ही न हो कि उसे कहाँ जाना है, तो वह रास्ते में ही भटक जाएगा। उसी तरह अगर इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं होता तो उसकी मेहनत भी बिखर जाती है। लक्ष्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने समय, ऊर्जा और मेहनत को किस दिशा में लगाना है। जब हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हमारा मन और हमारी मेहनत उसी दिशा में लगने लगती है। और हम देखते हैं कि आज के समय में युवाओं के सामने कई अवसर भी हैं और कई चुनौतियां भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि युवा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सी बार उनके साथ ये होता है कि आखिरकार उन्हें जीवन में करना क्या है। वो मेहनत कहीं और कर रहे होते हैं और उन्हें जीवन में पाना कुछ और होता है। ऐसी स्थिति में उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं लग पाती। इसलिए युवाओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब लक्ष्य तय होता है ना श्रोता साथियों, तो पढ़ाई, मेहनत और प्रयास भी उसी दिशा में होने लगते हैं और वो अच्छे से भी हो पाते हैं। अब बात आती है कि लक्ष्य तय करने का सही तरीका आखिरकार है क्या। तो साथियों, लक्ष्य तय करते समय कुछ बातों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि हम लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हों। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे जीवन में सफल होना है, तो यह एक इच्छा है, लेकिन यह स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। लेकिन श्रोता साथियों, कोई कहे कि मुझे अच्छा शिक्षक बनना है या फिर मुझे एक सफल उद्यमी बनना है, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। दूसरी बात यह है कि लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। हमें ऐसा लक्ष्य चुनना चाहिए जिसे मेहनत और धैर्य के साथ हासिल किया जा सके। बहुत सी बार हम ऐसे लक्ष्य को चुन लेते हैं जिसे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और वो हमारी पहुंच से भी बहुत दूर होता है। तो हमें हमेशा उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है जो हम पा सकते हैं, और उसमें हम मेहनत और धैर्य और पूरी लगन के साथ कार्य करें ताकि वह लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। तो साथियों, ये बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही हैं कि किस तरीके से लक्ष्य हमारे लिए ज़रूरी है, युवाओं के लिए लक्ष्य का क्या महत्व है और लक्ष्य तय करने का सही तरीका क्या है। आगे भी इस विषय पर हमारी आपसे कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम का दस्तूर है कि बीच बीच में भी हम मनोरंजन के लिए आपको गीत सुनवाते हैं। तो आज भी साथियों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, और ये जो बातें हमारी आपसे कार्यक्रम में चल रही है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अक्सर हम हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में बहुत कुछ करे, लेकिन हमेशा हमारे साथ ये होता है कि हम कभी भी हमारा अच्छे से लक्ष्य भी तय नहीं कर पाते, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं हमें बनानी होती है वो भी हम नहीं बनाते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, बीच में हमें क्या करना है, उसका अंत क्या होगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम हमारे लक्ष्य से और पीछे हटते जाते हैं। तो साथियों, यही अब हम बात करते हैं कि छोटे लक्ष्यों की ताकत क्या है। जी हाँ, कई बार लोग बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन उसे पाने का रास्ता तय नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटा जाए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं श्रोता साथियों, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि अगर किसी छात्र का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, तो उसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। इस तरह छोटे कदम ही हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। साथियों, केवल लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य भी जरूरी होती है। रास्ते में कई बार कठिनाइयां भी आएंगी, कई बार असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य मजबूत है ना दोस्तों, और हमारे मन में विश्वास है, तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, और यही धैर्य और मेहनत हमें सफलता की ओर भी ले जाती है। तो साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कई महान लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितियों से की है, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करते रहे। इसी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है दोस्तों। यह हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने ये जाना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य हमें दिशा देता है, हमें प्रेरणा देता है, और हमें अपने सपनों को सच करने का रास्ता भी दिखाता है। तो याद रखिए श्रोता साथियों, कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है, उसके जीवन में हर दिन एक नई दिशा होती है। इसलिए अपने सपनों को केवल सपना न रहने दें, उन्हें लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करने के लिए पूरे मन से प्रयास कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहूंगी। आशा करूंगी कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए प्यारे से प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला।

0: जंक फूड तक ही दूर रह, निंदर पूरी ल निखुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज से सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में हम जब भी हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है, और जैसा कि हम स्तनपान सप्ताह मना ही रहे हैं तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि विश्व स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, साथ ही स्तनपान से हमें क्या सीख मिलती है और किस तरीके से ये जो सीख है वो माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखती है। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से हम ढेर सारी बातों को। जैसा कि पिछले 2-4 दिनों में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि स्तनपान से जुड़ी किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। विशेषज्ञ ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना, माँ का संतुलित आहार, परिवार का सहयोग और सही जानकारी, ये सभी बातें श्रोता साथियों बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्तनपान केवल बच्चों का भोजन नहीं बल्कि उसे प्यार, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देने का सबसे प्राकृतिक माध्यम है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और माँ के स्वास्थ्य को भी कई लाभ मिलते हैं। इसलिए हर माँ को सही जानकारी, सम्मान और परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी और भी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर प्रद्युमन जैन, जो कि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बातें उनसे हम ढेर सारी करेंगे, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ भविष्य को लेकर, और विषय विशेषज्ञ जो हमारे साथ रहने वाले हैं डॉक्टर प्रद्युमन जैन, उनसे आज हमारी विशेष चर्चा रहने वाली है कि किस तरीके से स्तनपान की सही जानकारी जो है वो उसे सफल बनाती है, परिवार का सहयोग क्यों जरूरी है, साथ ही माँ का अच्छा पोषण बच्चे के भविष्य के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए कैसे जरूरी है, कुछ मिथक समाज में फैले हुए हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, साथ ही परेशानी होने पर महिलाएं किससे सहायता ले, घर का सहयोग और माँ का आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं, ढेर सारी बातें रहेंगी। तो आइए सबसे पहले विषय विशेषज्ञ का स्वागत करते हुए जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। सर नमस्कार। सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर प्रद्युम्न जैन है। मैं बांसवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में नवजात एवं शिशु विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ का नवजात शिशु इकाई का इंचार्ज भी हूँ।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और हम सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है।
1: देखिए, अभी जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, मतलब साप्ताहिक स्तनपान प्रोग्राम जो प्रति वर्ष हम 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसकी हर वर्ष की अलग एक थीम रहती है, और इस वर्ष की जो थीम है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान पे विशेष महत्व दिया है। जिसमें जन्म के 1 घंटे के भीतर ही अपने को स्तनपान शुरू कराना है और इसको कम से कम 6 महीने तक ओनली स्तनपान ही सतत रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, और उसके बाद पूरक आहार स्टार्ट करके 2 साल तक स्तनपान हर शिशु को देना है।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है उससे हमें अवगत करवाया है, तो अब मैं हमारे क्षेत्र में स्तनपान की स्थिति कैसी है उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी।
1: देखिए, हमारा जो एरिया है वो आदिवासी बाहुल्य एरिया के रूप में आता है, जहाँ पे साक्षरता की कमी ही है और आर्थिक रूप से कम लोग वाली आबादी बहुत ज्यादा है, वजह से यहाँ के आंकड़े हमेशा से थोड़े से दयनीय रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम स्तनपान की बात करें तो जो मुख्य रूप से स्तनपान है 6 महीने तक कराने का, जो मैंने पहले बताया,
0: बिल्कुल,
1: उसमें हमारे 100 में से 60 माताएं ऐसा कर पाती है जो केवल 6 महीने तक स्तनपान कराती है।
0: बिल्कुल।
1: और मतलब 100 में से 40 माताएं ऐसी है जो 6 महीने से पहले स्तनपान के अलावा बाकी आहार शुरू कर देती है या पूरी तरह से स्तनपान नहीं करा पाती है, और शुरू के 1 घंटे में स्तनपान शुरू कराने वाली माताएं खाली 50 से 55% ही है, मतलब अभी भी 45% माताएं ऐसी है जो शुरू के 1 घंटे के भीतर शिशु को अपना स्तनपान या जीवन का जो जिसे अमृत कहते हैं उसे शुरू कराने के पानी में असमर्थ है।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है वो थोड़ी सी दयनीय है, क्योंकि अभी भी कुछ महिलाएं इस चीज को लेकर जागरूक नहीं है, तो सर किन चुनौतियों पर अभी काम करने की जरूरत है, क्या ऐसी समस्याएं उनके सामने आती हैं?
1: इसमें मैडम हमें इंडिविजुअल, पारिवारिक, सामुदायिक और सामाजिक स्तर पे सब तरह से हर किसी को योगदान देना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारी स्कीम बहुत लंबे समय से निःशुल्क उपलब्ध है, पर उसके अलावा हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें घर के हर सदस्य को, चाहे पुरुष हो महिलाओं को, जब भी माँ गर्भ धारण करती है तब से जागरूक होकर उसकी नियमित एंटीनेटल चेकअप, मतलब गर्भावस्था के दौरान जांच, उसको गर्भ कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है या बच्चे का प्रीमैच्योर होना या सोनोग्राफी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
0: बिल्कुल।
1: और हमेशा ये सुनिश्चित करे कि बच्चे का जन्म चिकित्सालय में ही हो, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो हायर सेंटर पे जैसे महात्मा गांधी चिकित्सालय या ऊपर, और अनकॉम्प्लिकेटेड है तो पेरीफेरी में भी डिलीवरी करा सकते हैं, ताकि हम स्तनपान से संबंधित जानकारी गर्भावस्था में जान ले और शुरू के 1 घंटे में जैसा कि हमने बताया त्वरित रूप से स्तनपान शुरू कर सके, और उसमें अगर कोई समस्या आती है तो हम चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी है आशा वर्कर इनकी सहायता लेके उस समस्या का निवारण करके इस स्कीम का पालन कर सके।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो स्वास्थ्य विभाग क्या प्रयास कर रही है, जैसे कि आशा, ANM और आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या भूमिका है इसमें और वो किस तरीके से महिलाओं को इसको लेकर जागरूक कर सकती हैं?
1: हमारे राज्य सरकार की तरफ से जननी सुरक्षा योजना, जिसमें गर्भवती माताओं के लिए निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच है,
0: बिल्कुल,
1: उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा, हायर सेंटर पे जाना हो या रिक्शा जो वापस घर जाना हो, उनकी निःशुल्क जांचों के अलावा उनका निःशुल्क प्रसव और प्रसव के उपरांत भी उनको पोषण जो सरकारी चिकित्सालय में योजना के तहत फ्री में मिलता है, और पोषण के बाद उनका किस तरह से स्तनपान कराना है, आगे क्या ट्रीटमेंट लेना है, या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आगे किस चीज का ध्यान रखना है, ये सब सरकार की तरफ से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा माँ योजना भी है, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन कहते हैं, जिसमें जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करना और उसको आगे किस तरह से नियंत्रण जारी रखना है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है, और उसके लिए पहले से प्रयास किए जाते हैं। और पोषण प्रोग्राम भी आता है, जिसमें गर्भवती माताओं के लिए पोषण की व्यवस्था गर्भावस्था के दौरान उसके बाद ये सब उपलब्ध है। और किसी बच्चे के अगर अपन चिकित्सालय में डिलीवरी कराते हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से हर स्टेज पे जन्म के तुरंत बाद 1 साल पे 5 साल पे अमित राशि उपलब्ध है, जिससे वो आगे बच्चों की अच्छे से परवरिश भी कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जिससे हम उनके बारे में जानकारी लेके उस लाभ को ले सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आशा, आंगनबाड़ी, ANM जैसा आपने पूछा कि उनकी क्या भूमिका है, तो हमारे रूट वर्कर कहलाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गाँव में हर घर को अच्छे से जानते, चाहे दूरस्थ एरिया क्यों ना हो, तो ये लोग जाके अपनी लोकल लैंग्वेज में उन माताओं को जागरूक करके इस प्रचार अभियान को और अच्छे से चला सकते हैं और कुपोषण के चक्र को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने हमें बताया कि स्वास्थ्य विभाग के क्या प्रयास हैं, साथ ही आशा, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस तरीके से इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है और ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि हम बीच बीच में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना हम हमारे साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं गीत को, आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से सरकार और आशा एएनएम आंगनबाड़ी के जो लोग हैं उनके द्वारा किस तरीके से महिलाओं को स्तनपान को लेकर जागरूक किया जाता है, यहीं से अब मैं जानना चाहूंगी समुदाय कैसे सहयोग कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस चीज में समुदाय का जो सहयोग है उनका जागरूक होना भी बहुत जरूरी है।
1: सामुदायिक स्तर पे अपन बात करें मैडम, तो जैसे कि परिवार के सदस्य हैं वो लोग, पुरुष वर्ग ये ध्यान रखे कि माँ गर्भावस्था है तो उसको पर्याप्त रूप से आराम की जरूरत है, उसके अच्छे पोषण की जरूरत है, उसके अलावा उसको नियमित जांच की जरूरत है तो उसको प्रोत्साहित करें उसके लिए,
0: बिल्कुल
1: उसको अतिरिक्त काम नहीं करवाए। उसके अलावा जो एनजीओ वगैरह है जो नुक्कड़ नाटक या फिर आयुष के माध्यम से प्रचार प्रसार करके उनको शिशु के स्तनपान से रिलेटेड है उसके क्या फायदे हैं उसकी सारी जानकारी दे सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: और इस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं।
0: जी सर, इसमें पुरुषों की भागीदारी कैसे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी बार जब इन सारी चीजों को लेकर बातें आती हैं तो महिलाओं की भागीदारी को ज्यादा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है, तो पुरुष इसमें कैसे बराबरी की भागीदारी निभा सकता है?
1: हाँ, जैसा कि मैडम मैंने बताया, पुरुष इसमें ये सहायता कर सकते हैं कि गर्भावस्था किसी भी माँ के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से एक चुनौती भरा अवस्था रहती है, क्योंकि इसमें 9 महीने तक पूरी गर्भावस्था का प्रोग्राम चलता है, तो इसमें माँ मानसिक और शारीरिक रूप से परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ी सी फ्री रहे, आराम करे, अच्छे से पोषण ले, और पुरुष वर्ग भी अपना टाइम निकाल के उसके साथ जाके उसकी नियमित जांच करवाए, उसको हर तरह से सहयोग दे। उसके अलावा गर्भधारण और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी पुरुष बच्चे को केएमसी करा सकते हैं, बच्चे को अपने शरीर से लाकर हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं, और उसके ट्रांसपोर्ट में
0: जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें पुरुष अपनी भागीदारी कैसे निभाए, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि भविष्य में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जैसा कि इस वर्ष की थीम है, उस हिसाब से भविष्य के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत है, फिल्मी डायलॉग सुने होंगे माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, जो इसलिए कहा गया कि माँ का दूध बच्चे को शारीरिक और मानसिक और इमोशनली हमेशा के लिए बैलेंस रखता है, ताकि आगे आने वाले जीवन में वो चाहे किसी भी स्टेज पे हो, अगर उसने माँ का दूध पिया है शुरू के 2 वर्षों में तो वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से सारी नीति अवेलेबल रहती है, सारा पोषण फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन की संतुलित मात्रा रहती है,
0: बिल्कुल,
1: और ये बिना खर्च के भगवान की तरह दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसके लिए माँ अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य दे सकती है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में हमें बता रहे हैं कि भविष्य में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि यदि किसी माँ को कुछ परेशानी है तो वो कहाँ जाकर संपर्क कर सकती है?
1: हमारे यहाँ पे सरकारी सुविधाओं में आंगनबाड़ी से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हर गाँव, कस्बा, सिटी और उसके बाद जिला अस्पताल भी अवेलेबल है, तो आपके नियरेस्ट 1 किलोमीटर एरिया में हमेशा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहती है, तो अगर दूर नहीं आ सके तो आशा एएनएम तो अवेलेबल नहीं है हमेशा, इनकी सहायता लेके आप एक बार प्रारंभिक जानकारी ले सकते हैं, और किसी कारण से अगर समस्या का निवारण नहीं होता है तो आप जिला चिकित्सालय में कभी भी आके परामर्श ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो नई माताएं होती हैं बहुत सी बार उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अपने बच्चों को स्तनपान कैसे कराएं, साथ ही अभी हम देखते हैं कि अभी के समय में जीवन शैली बदलने के कारण सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में माँ कैसे अपने आप का और अपने बच्चे का ध्यान रखे और सही तरीके से बच्चे को स्तनपान करा पाए?
1: ऑपरेशन जैसे किसी बच्चे का प्रसव अगर सामान्य नहीं हो गया, ऑपरेशन से भी होता है, तो उसमें कोई भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन की हुई माँ तुरंत बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती है। ऑपरेशन के बाद भी अगर पारिवारिक सामुदायिक स्तर पर अगर लोग उनका हेल्प करें, जैसे घर की और महिलाएं वृद्ध महिलाएं वो उनकी सहायता करें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे, तो वो थोड़ा करवट लेके बच्चे को 1 से 1.5 घंटे में स्तनपान शुरू करवा सकती है, क्योंकि शुरू के जन्म के तुरंत बाद बच्चा जागृत अवस्था में रहता है,
0: बिल्कुल,
1: और उस टाइम अगर उसको ग्लूकोज मिल जाए तो वो उसके लिए गोल्डन पीरियड रहता है, उसके बाद बच्चा फिर वापस सुस्त होने लगता है। तो शुरू के एक घंटे में चाहे सामान्य प्रसव हो चाहे ऑपरेशन के द्वारा प्रसव हो, हमेशा ये प्रयास होने चाहिए कि माँ तुरंत उसको दूध पिलाना शुरू करे। उसके लिए दो तीन पोजीशन रहती है, जैसे करवट बदल के लेना, तकिए पे बच्चे को रख के फीडिंग कराना या किसी की हेल्प लेके फीडिंग कराना, तो वो सब सहायता लेके हम लोग करा सकते हैं। और किसी कारण से अगर माँ का दूध नहीं आता है, जैसे कोई एनाटोमिकल प्रॉब्लम है, रिजेक्टेड निप्पल होना या कोई और तरह की समस्या होना, तो चिकित्सक की परामर्श लेके उसका निवारण किया जा सकता है। बहुत आसानी से हर लेवल पे उपलब्ध है।
0: बिल्कुल, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं को और बच्चे को इसके स्वास्थ्य लाभ क्या मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक इसके लाभ क्या है उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है तो वो इस चीज को लेकर अनदेखा कर देते हैं कि ठीक है यही तो कराना है। तो इसके स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है जो माँ और बच्चे दोनों को पता होने चाहिए?
1: तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें माँ और बच्चे और मैं तो यूँ कह रहा हूँ पूरे परिवार और समुदाय को भी इससे बहुत बड़ा लाभ है।
0: बिल्कुल,
1: देखिए हम जैसे माँ की बात करते हैं तो माँ अगर बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उस माँ के नेचुरली जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है, उसका नेचुरली गर्भ निरोध रहता है शुरू के एक दो साल तक जब तक वो फीडिंग कराती है। क्योंकि इस तरह के हार्मोन निकलते हैं जो आगे आने वाले गर्भधारण को रोकते हैं, तो उसको गर्भ रोकने के लिए और किसी दवाई की जरूरत नहीं है। पहला बात तो ये, दूसरा ये है कि माँ का शरीर जो गर्भावस्था में अतिरिक्त वजन या फैट को ग्रहण करता है वो भी अगर माँ रेगुलर अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो अतिरिक्त वसा निकलने में हेल्प करता है, तो माँ का शरीर वापस पहले जैसा सुडोल हो जाता है जो माँ का गर्भ जो फीडिंग कराती है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है।
0: बिल्कुल,
1: तीसरा लाभ है माताओं को आने वाले समय में ब्रेस्ट से होने वाले कैंसर, अंडाशय के होने वाले कैंसर, गर्भाशय के कैंसर, इन सब से बचाव मिलता है अगर वो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो ये तो माँ के प्रमुख लाभ हो गए। अब बच्चे को इसका लाभ ये है कि बच्चे में अगर शुरू के आवर्स में फीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी नहीं होती है, क्योंकि ग्लूकोज की कमी से आने वाले भविष्य में उसके आंखों की दृष्टि बाधित हो सकती है, दिमाग पे असर हो सकता है। दूसरा लाभ है उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन मिलता है, मतलब बच्चा ठंडा नहीं होता है
0: जी,
1: क्योंकि नेचुरली वो माँ के शरीर से त्वचा संपर्क होने से गर्म रहता है, तो उससे होने वाली जटिलता चाहे इन्फेक्शन होना चाहे सुस्त होना ये सब नहीं होगा।
0: तीसरा,
1: माँ के दूध में प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी वाले सारे पदार्थ मिलते हैं जिससे उसके भविष्य में होने वाले निमोनिया नहीं होता, उसको रक्त की समस्या नहीं होती है, डायबिटीज नहीं होती है इस तरह से, और इमोशनली माँ बच्चे से अच्छे से अटैच होता है।
0: बिल्कुल,
1: और इमोशनल प्रॉब्लम भी सारी दूर हो जाती है, तो संपूर्ण रूप से लाभदायक है। और इवन दूध को तो बच्चे का पहला टीकाकरण कहा गया माँ के दूध को, कि नेचुरल टीकाकरण है जो भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करता है।
0: बिल्कुल सर,
1: समुदाय को इसके लिए लाभ है कि उसके परिवार को आर्थिक रूप से कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि नेचुरली दिया हुआ भगवान का उपहार है। अगर आप नेचुरली नहीं दोगे तो बाहर से डिब्बे लोगे तो आपके हर तीन चार दिन में डिब्बे का अलग खर्चा, कतल चम्मच का अलग खर्चा, फिर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता तो सोने वाली बीमारी का खर्चा, इन सब खर्चों को ये दूर करता है।
0: बिल्कुल सर,
1: ये सभी तरह से फायदे करता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से स्तनपान कराना माँ बच्चे और समुदाय सभी के लिए फायदेमंद है। यही हम देखते हैं कि पुराने के समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो जन्म घुटी और दूध पिलाने के बाद भी ऊपर से पानी देने की बातें करते हैं कि गर्मी का मौसम है बच्चे को पानी दे दे, कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और समाज को कैसे जागरूक करेंगे?
1: बिल्कुल मैडम, ये भ्रांति आज से दो दशक पहले बहुत ज्यादा थी, जिसमें इवन हम ये देखते थे कि हमारे अस्पताल में डिलीवरी कराने वाले गड्ढे की रुई निकाल के उस रुई से दूध को निचोड़ के देते थे, बकरी का दूध है या शहद की बूटी चला जाते थे। इसको तो हमने काफी हद तक दूर करने के प्रयास किए हैं, फिर भी अभी ग्रामीण अंचल में ये प्रचलन है कि बच्चे को डिलीवरी के बाद शहद चटाना या बूटी देना इस तरह के, तो इनको प्री इलेक्टिव फीड कहते हैं, ये सब इन्फेक्शन के प्रमुख कारण है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर एक जैसे आप समझिए कटोरी है जिसकी वॉल्यूम कैपेसिटी 100 ml, अगर आप इसमें 10 ml की और चीज भर देंगे तो 10 ml नहीं मिलेगी, 90 ml बाकी उपयोगी चीज रहेगी। दूसरा, आप इन चीजों से भर देंगे बच्चे का मुंह, तो बच्चे को जो माँ का पहला गाढ़ा दूध, जो पहला टीकाकरण या प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी से भरा हुआ, वो बच्चा ग्रहण नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा जो उपरी पदार्थ आप देंगे भुट्टी वगैरह, तो इन सबसे होने वाले इन्फेक्शन से बच्चा बीमार हो जाएगा। तो ये तो हमेशा अपने को नहीं देना चाहिए, कभी भी तेल पीड़े या गुट्टी या जन्म गुट्टी शहद कुछ भी नहीं देना, ओनली और ओनली माँ का दूध ही देना है। नहीं दे सकते कोई कारण है तो फिर चिकित्सक की परामर्श लेने।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि गाँव में किस तरीके से स्तनपान जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए जिससे लोग सरल तरीके से और आसानी से जागरूक हो पाए।
1: पहला तो मैडम समुदाय स्तर पे ये नाटक नुक्कड़ नाटक है या IEC के माध्यम से जगह जगह पोस्टर लगा के स्तनपान के महत्व, शिशु को किस तरह का आहार देना, ये सब जागरूकता फैला सकते हैं। दूसरा, गर्भावस्था जैसे ही माँ धारण करे तो सरकार की तरफ से होने वाले निःशुल्क सारे फायदे, सारी जांचों के बारे में अच्छे से बताना चाहिए। और इसमें हमारी प्रमुख भूमिका आती है आशा और AN वर्कर की, क्योंकि ये गांव के हर परिवार को, इवन हर गर्भावस्था महिला को अच्छे से जानते हैं।
0: जी जी,
1: तो ये पहले दिन से जाके उन्हें जागरूकता फैला सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि कार्यक्रम में आपने स्तनपान को लेकर ढेर सारी जानकारी से हमारे श्रोता साथियों और हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्हें अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारी माताओं को, श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक शिशु को चिकित्सक के रूप में यही संदेश देना चाहूंगा सभी माताओं को कि आज के जमाने में अगर हम इन सब चीजों को समझते हैं तो हमें स्तनपान शुरू के 1 घंटे में ही गर्भ प्रसव के बाद तुरंत शुरू करा देना और इसमें अपना पूरा सहयोग देना है और उसको निरंतर 6 महीने तक केवल और केवल माँ का पीड़ी कराना है और 6 महीने के बाद माँ के पीड़ के अलावा थोड़ा पूरे का आहार शुरू करना है और माँ के पीड़ को कम से कम 2 साल तक जारी रखना है। इसमें हमें खुद पर भी अपना ध्यान रखना है और ये हमें नॉलेज है उसको शेयर करके इसको हर जगह फैलाना भी है ताकि सभी गर्भवती माताएं इसका लाभ ले सके।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद अंजलि जी।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर प्रद्युमन जैन जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से स्तनपान कराना माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही परिवार, समाज और इन सब की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो बातें ढेर सारी कार्यक्रम में चल ही रही है, आगे भी यूं ही बनी रहेंगी हमारी आपसे, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं एक और प्यारे से गीत को।

साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और गीत से पहले हमारे साथ डॉक्टर प्रद्युमन जैन जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि किस तरीके से स्तनपान सप्ताह मनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रोता साथियों, स्तनपान केवल माँ और बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्तनपान जो है वो केवल बच्चों का भोजन नहीं बल्कि उसे प्यार, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देना और साथ ही प्राकृतिक माध्यम से बच्चे को पोषण देने का होता है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे लगता है कि उसकी जो माँ है वो हमेशा उसके साथ है। जैसा कि एक माँ को सही जानकारी होना, सम्मान और परिवार का सहयोग मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्तनपान सप्ताह के इन दिनों में ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने घर, परिवार और समाज में स्तनपान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करेंगे, नई माताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, सही जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और यही जागरूकता एक स्वस्थ बचपन, सशक्त मातृत्व और उज्जवल भविष्य की और सबसे मजबूत नींव बनेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे के जो हजार दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो बच्चे और माँ के साथ घर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। जब बच्चे को पूरे हजार दिन का पोषण मिलता है तो बच्चा जो है वो स्वस्थ होता है, निरोगी रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और साथ ही विकास अच्छे से हो पाता है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हम जान पाए कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है और डॉक्टर के माध्यम से भी हमने जाना कि किस तरीके से समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है जिसका निवारण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बातें जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी हुई है, लेकिन अब यहीं सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, उस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं आपको कहना चाहूँगी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जीवन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है माँ का स्पर्श और माँ का दूध। माँ का दूध केवल भोजन नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार होता है, जो नवजात शिशु को जीवन की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा देता है। यह पूरी तरह प्राकृतिक, स्वच्छ और संतुलित और बच्चे की उम्र के अनुसार सबसे उपयुक्त आहार है। इसलिए इसे बच्चे का पहला अधिकार भी माना जाता है। बच्चे के जन्म की बात का समय उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान श्रोता साथियों, माँ का दूध उसे आवश्यक पोषक तत्व, ऊर्जा और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, बच्चे के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। यह उसके शरीर की और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और कई गंभीर संक्रमण से बच्चे को बचाने में मदद करता है। जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध देना ही सबसे अच्छा माना जाता है। जैसा कि हमने डॉक्टर के माध्यम से भी जाना कि इस अवधि में बच्चे को पानी, शहद, जन्म खूटी या अन्य कोई भी चीज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में ही पानी, पोषण और ऊर्जा सब कुछ उचित मात्रा में होता है जितनी बच्चे को आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त होता है। स्तनपान का लाभ केवल बच्चे तक सीमित नहीं होता है श्रोता साथियों, बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव हमें सकारात्मक देखने को मिलता है। स्तनपान कराने से माँ के शरीर को प्रसव के बाद सामान्य स्थिति में लौटने में सहायता मिलती है। यह माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत बनाता है। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान कराती है तो बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और स्नेह का अनुभव होता है, जो उसके मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में बाजार में कई प्रकार के शिशु आहार उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी माँ के दूध का विकल्प नहीं हो सकता। माँ का दूध हमेशा ताजा, स्वच्छ और सही तापमान पर उपलब्ध रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का खतरा नहीं होता और न ही इसे तैयार करने की आवश्यकता होती है। इससे परिवार का आर्थिक खर्च भी कम होता है और अनावश्यक प्लास्टिक बोतलें और पैकेजिंग के उपयोग में कमी आने से पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि नई माताएं यह सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि उनका दूध पर्याप्त नहीं बन रहा या बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा। ऐसी स्थिति में घबराने या घरेलू मथकों का विश्वास करने के बजाय डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता, ANM या स्तनपान सलाहकार से सलाह लेना सबसे सही कदम है। सही जानकारी और थोड़े से मार्गदर्शन से अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। स्तनपान को सफल बनाने में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पति, दादा दादी, सास ससुर और अन्य सदस्य माँ का मनोबल बढ़ाएं, उसे आराम दें और घर के कामों में सहयोग करें, तो माँ अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने शिशु की देखभाल कर सकती है। एक सहयोगी परिवार ही स्वस्थ बचपन की सबसे मजबूत नींव होती है। तो दोस्तों, जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम कार्यक्रम का पता आपको बताना चाहेंगे, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल ID लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाग धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग्र रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपकी फरमाइशों के गीत संगीत सुनाते हैं, और आप आपकी फरमाइशों के गीतों को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फरमाइश के सिलसिले को हम शुरू करते हैं, और पहली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है संगीत, गीत के बोल हैं ओ राधा कोई तो बताए और अब्बा कोई तो बताए। फरमाइश करता है इस गीत की, बागपत से हैं सुरेश, कनिका, राहुल, दीप्ति, अदिति, और खंडवा से हैं मेघराज, सुरेश, विक्रम, लक्ष्मण, चंद्रपाल, कानपुर से हैं कुनिका, शर्मा, राजा राम, मनसाराम और संदीप, बाड़मेर से हैं कुलदीप चौहान, विक्रम चौहान, आदित्य, अंकित और शुभम। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल थे और रब्बा कोई तो बताया, इस गीत को आवाज़ दी थी अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर ने। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है दीवाना। गीत के बोल हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। फरमाइश करता है इस गीत की बागपत उत्तर प्रदेश से हैं आशिफ अली खान, मोमिना सा खान, मुस्कान खान, सादिक अली खान और शारिक अली खान, जॉन रोजी पर्ल विलेश सहारनपुर से हैं, जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम बनारस से हैं, मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, मैं जुड़वारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान अनास, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला शानू, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बबन मुनु, काना ठाकुर, हरिप्रिया ठाकुर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। फरमाइश करता है इस गीत की दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं साबिर परवाना, लखन लाल, राम स्वरूप कुमार, अभिषेक वर्मा। छत्तीसगढ़ से हैं हेमंत, रोशन, अजीत और मखलान। दिल्ली से हैं मनोज कुमार, राकेश पटेल और राकेश कुमार, मेघराज मीना। झारखंड से हैं अमर सिंह, श्यामलाल और हरिमोहन। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी।
1: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत की बोल है देर ना हो जाए कहीं। फिल्म का नाम है हिना। फरमाइश करता है इस गीत के, कुलिया गांव से हैं मनोज कुमार, अक्षय, राकेश और प्रतिभा। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विनीता, सुमन और कविता। इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, नाम बता दें आप सभी को। जम्मू कश्मीर से है संदीप जैन, मेघराज मीणा, अजय कुमार। छत्तीसगढ़ से हैं राजा मोहन राय, सुरेश पालक और लक्ष्मण सिंह ठाकुर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं।

0: गीत सुना है इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है पैरों में बंधन है, गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है, फिल्म का नाम है मोहब्बते। फरमाइश करता है इस गीत के, गया से हैं मुकेश कुमार, अंजलि कुमारी, रवि पासवान और रीना देवी। मलदा से हैं सुभाष मंडल, पूजा सरकार, संजीव दास, रानीपाल। असम से हैं दीपेन, पायल बोरा, रजत दत्ता और रीता। देहरादून उत्तराखंड से हैं मोहित राव, सीमा, अजय नेगी। कर्नाटक से हैं रमेश गोड, प्रिया सेट्टी, सुरेश नाइक, कविता हेगड़े। छत्तीसगढ़ से हैं लक्ष्मण कश्यप, ममता नेताम, रमेश मकराम, गीता कोराम। महाराष्ट्र से हैं गणेश, कविता, राजू और सुनीता। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं अमित यादव, पूजा सिंह, रोहित मौर्य और नेहा पटेल। खेरवाड़ा से हैं रमेश मीणा, गीता मीणा, मोहन डामोर और सुनीता कटारा। कुशलगढ़ से हैं दिनेश निनामा, कमला डिंडोर, सुरेश कटारा और ममता डामोर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है।
1: झुकने वाली नहीं,

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर, फिल्म का नाम है बाजीगर। फरमाइश करता है इस गीत के, कानपुर से हैं दीपक तिवारी, प्रिया गुप्ता और राहुल वर्मा, कविता शुक्ला। उत्तर प्रदेश से हैं संजय यादव, अंजलि पटेल, मोहित सिंह और रश्मि मौर्या। पटना से हैं मुकेश कुमार, पूजा कुमारी, रवि पासवान, अंजलि सिंह। बिहार से हैं दीपक यादव, रीना जोशी, रोहित कुमार, कविता कुमारी। मुंगेसाफुर से हैं दीपक तिवारी, प्रिया और अमित श्रीवास्तव, पूजा सिंह, रोहित मिश्रा, नेहा यादव। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं अमित झा, पूजा कुमारी, संजय सिंह और नेहा राज। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत की भूल है बाजीगर ओ बाजीगर।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। फरमाइश करता है इस गीत की, लखनऊ से है अमित श्रीवास्तव, पूजा सिंहा, रोहित मिश्रा, नेहा यादव, राजस्थान से हैं विकास अग्रवाल, नेहा शर्मा, रोहित जैन, प्रिया कुमारी, अजय चौधरी, कविता विश्नोई, दीपक सिंह और रश्मि राठौर, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। कुड़ागांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपक मरकाम, पूजा नेताम, भरत कश्यप, रेखा कोराम, लिमखेड़ा गुजरात से हैं भरत बारिया, कविता, अर्जुन चौहान, ममता नायक, पेटलावत से हैं मनोज भूरिया, अंजलि डामोर, सुरेश, कविता कटारा, अलीराजपुर से हैं भरत वसूरियाना, रेखा, दीपक और पूजा सोलंकी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं छैया छैया, फिल्म का नाम है दिल से। फरमाइश करता है इस गीत की जामताड़ा से हैं कमलेश पूजा अर्जुन, सोरेन और रानी, पाकुड़ से हैं अजय सीमा दीपक कविता, दुमका से हैं राजेश मीना सुशील पूजा मरांडी, लोहरदंगा से हैं भरत लंका लंकड़ा रीना सुरेश उराव और पूजा मुंडा, गुमला से हैं जितेंद्र रानी राजेश और कविता, रांची से हैं अजय सुनीता मनोज रेखा, नारायणपुर से हैं भरत अनीता राजू संगीता कश्यप, बदसर से हैं लक्ष्मण कश्यप ममता रमेश, झालोद से हैं कमलेश रानी दीपक चौहान, देवगढ़ से हैं जितेंद्र ममता, जोबट से हैं मुकेश संगीता नरेश अनीता, थानला से हैं कमलेश रीना जितेंद्र और ममता। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है तू मेरा जानू है, फिल्म का नाम है हीरो। फरमाइश करता है इस गीत की, लालगंज से है आशीष कुमार, नीतू कुमारी, नीरज कुमार, अर्पिता कुमारी। इस्लामपुर से है शुभम कुमार, रिंकू देवी, राकेश राज, प्रीति कुमारी। महुआ से है विक्रम कुमार, रूबी कुमारी, चंद्र राय और पायल कुमारी, प्रिंस कुमार, सोनी कुमारी। कोरवा से है देवेश गौतम, निशा भारती। मेजा से है अनुराग पटेल, ज्योति विश्वकर्मा, अमन आनंद, शिखा कुमारी। सोरवा से है अभिषेक निषाद, स्वाति बिंद, पवन विश्वकर्मा, राधा पाल। फूलपुर से है वैभव सोनकर, कोमल मौर्या, शिवम, आरती गुप्ता, आदित्य तिवारी और दीक्षा शुक्ला। शैलेंद्र अवस्थी, रंजना शुक्ला। मानिकपुर से है विनय त्रिपाठी, आराधना पाटिल, ब्रजेश पाल और शशि लोधी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपके फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है पायलिया, फिल्म का नाम है दीवाना। फरमाइश करता है इस गीत की, अकोला से है सुरेश चंद्र राव, सविता, कविता और मुस्कान। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ, मैं आप सभी को नाम बताना चाहेंगे। मकसद से है कमलेश राठौर, श्वेता पाटीदार, सुसनेर नगर से हैं ललित गुजर, वर्षा परिहार, दिलीप, ममता, ओम प्रकाश और सविता, हेमराज डांगी, काजल सेन, ये सभी हैं इछावर से। सिरोज से हैं गौरव सक्सेना, वंदना जाट, धर्मेंद्र सोलंकी, सोनल मालविया, हर्षित जैन, उर्मिला चौहान, चंद्रेश पाटीदार और भावना पवार। दिग्गम से हैं हरीश, पुष्पा, भीमा और कमला। बालोद से हैं कमलेश यादव, ज्योति शाहू, मनहर सेना, शालिनी वर्मा, देवेंद्र और लता। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं पायलिया।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं, एक दिलरुबा है, फिल्म का नाम है बेवफा। फरमाइश करता है इस गीत के, बागपत सुरेवाली से हैं अर्जुन शुक्ला, मोहित रोहित और चिन्मय। अनुरोध करता है श्रोता साथियों इसी गीत के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बता दें आप सभी को। मरकाना से है अब्दुल शाहिद अहमद, मिजराना सबरा तबस्सुम, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। सांगीपुर से हैं दीपक तिवारी, अंजलि पांडे, राहुल शुक्ला, कविता। बेलागंज से हैं दीपक यादव, रीना देवी, रवि पासवान, मोहित कुमार, कविता, संजय कुमार, नेहा कुमारी, मुकेश कुमार। मुखावली से हैं महेश विश्नोई, प्रिया सुथार, दीपक स्वामी और नेहा राठौड़। फुलेरा से हैं राहुल मीणा, कविता सैनी, अजय रानी, मोहित शर्मा और पूजा जैन। बड़नगर से हैं दीपक, अमित जोशी और सीमा यादव। दीपालपुर से हैं नितिन, पूजा, राहुल, रेखा, विकास और प्रिया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत की, बोल हैं कोरे कोरे सपने मेरे। फरमाइश करता है इस गीत की पाटन से है संजय कुमार, रवि वर्मा, कविता मोहित साहू, नेहा पटेल। अभनपुर से है अजय साहू, पूजा, दीपक, नितिन, राहुल, रेखा, अमित, सीमा। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, नाम बता दें आप सभी को। चंद्रपुर से है संजय, ममता, दीपक, पूजा। यवतमाल से है कैलाश, रानी, भरत, विनोद जाधव, पूजा पवार, संजय सिंधी, रेखा। सूर्यवाड़ी से है भरत, रीना, महेश। पाकुड़ से है अजय, सीमा, प्रियंक, दीपिका, कविता, मुस्कान। बत्सर से है मानस, ऋतिक, कौशल। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कोरे कोरे सपने मेरे।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल है चुरा के दिल मेरा। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। फरमाइश करता है इस गीत के नाम बता दें आप सभी को। जौनपुर से है आदर्श श्रीवास्तव कंचन मौर्या, पीयूष तिवारी, विनीता यादव, विवेक, नंदिनी पटेल, रोशन सोनकर, प्राची बिंद, अरविंद गौतम, शिवानी निषाद। गांजीपुर से हैं नीरज राय, श्वेता सिंह, शोभा पांडे और अर्पिता। इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बलिया से हैं निखिल अवस्थी, रश्मि, अर्पिता, निधि, प्रशांत, शालू और समस्त परिवार। फतेहपुर से हैं प्रमोद, अर्चना, रोहित, किरण, हेमंत सैनी, दीपा शर्मा। बरहोर से हैं मनोज यादव, रेखा गुजर, दीपेश चौहान, पूनम यादव, सुनील सैनी, रंजना, रविकांत शर्मा, अनीता यादव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए। फरमाइश करता है इस गीत की, नाम बता दें आप सभी को। नवागढ़ से हैं यशवंत कश्यप, शीतल राहू, अंशुल वर्मा, कल्पना, गोविंद पटेल, प्रीति। इसी के साथ भाटापारा से जुड़ रहे हैं चिराग अग्रवाल, वैशाली जैन, वैभव गार्गी, निषाद, नारायण वर्मा और संध्या चंद्रकार। बागली से हैं तेजस चौहान, भावना डांगी, जितेंद्र चोरे, आरती। ब्यावर से हैं चेतन जैन, दिव्या नागर, लोकेश पवार, ममता सेन। अनुरोध करता है इस गीत के, सारंगपुर से हैं मुकेश धाकर, ऋतु मालविया, भूपेंद्र राठौड़, आराध्या चौधरी, हरिओम गुजर, तनु परमार, चेतन जैन, दिव्या नागर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, और यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा

साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पारेशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर और कशिश पारेशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों, राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागर रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जया पेड़ की छाव में आपने रह हां, या आपने ने कितनी शांति मिले है, जिन्हें हवा में आपने हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि हम केवल कमियों को न देखें।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि कशिश हम देखते हैं कि आज के दौर में अक्सर हम किसी व्यक्ति से मिलते ही उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। कोई थोड़ा देर से आया, कोई काम में गलती कर बैठा, किसी की बोलने की शैली अलग है या किसी का स्वभाव हमारी पसंद जैसा नहीं है, हम उसकी एक कमी देखकर उसके सारे गुण भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोताओं, क्या कभी हमने सोचा है कि क्या कोई इंसान पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है? शायद नहीं। तो आज इसी विषय पर हम खुलकर बात करेंगे कि केवल कमियां ना देखें।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गिस्संगिस सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें?
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें केवल लोगों की कमियां नहीं देखनी है। जैसा कि जागृति जी, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाइयां और कमियां दोनों होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी में नेतृत्व करने की क्षमता होती है तो कोई बहुत मेहनती होता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई दूसरों की मदद करने में आगे रहता है तो कोई अपनी रचनात्मक सोच से समाज को नई दिशा देता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ कमियां भी हर किसी में होती है जागृति जी। इसलिए यदि हम केवल कमियों पर ध्यान देंगे तो शायद श्रोता साथियों, हमें दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी एक गलती से नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व से तय होता है।
1: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं सोचिए, अगर हर बार कोई आपकी सिर्फ गलतियां ही बताए और कभी आपकी मेहनत या अच्छाई की सराहना ना करे तो कैसा लगेगा। यही बात दूसरों पर भी लागू होती कशिश, परिवार हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो या समाज, जहाँ केवल आलोचना होती है वहाँ विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि रिश्तों की मजबूती इस बात में नहीं कि हम एक दूसरे की गलतियां गिनाएं, बल्कि इस बात में है कि हम एक दूसरे को समझे और आगे बढ़ने में सहयोग करें।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के हमारी सोच ही हमारी पहचान बनती है। अगर हम हर व्यक्ति में अच्छाई खोजने की आदत डाल लें तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: सकारात्मक सोच केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं वे जीवन में बहुत अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथी श्रोता साथियों, याद रखिए कि गलती करना इंसान की फितरत है। कोई भी व्यक्ति जन्म से सब कुछ सीख कर नहीं आता जागृति जी। यदि कोई गलती करता है तो उसे हमेशा दोष देने के बजाय हमें उसे सीखने और सुधारने का मौका देना चाहिए साथियों।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी सी प्रेरणा, एक अच्छा सुझाव और थोड़ा सा विश्वास किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है। और देखा जाए तो यही सच्ची इंसानियत है। दोस्तों, दूसरों की कमियां देखना वैसे तो आसान है लेकिन अपनी कमियों को पहचानना थोड़ा कठिन है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम रोज कुछ मिनट अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर विचार करेंगे जागृति जी, तो हम ऐसा पाएंगे कि हमें भी बहुत कुछ सीखने और सुधारने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: जब इंसान खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है साथियों, तब उसे दूसरों की कमियां कम दिखाई देने लगती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, एक सच्ची तारीफ किसी व्यक्ति के अंदर नया आत्मविश्वास जगा देती है। कभी किसी छात्र की मेहनत की सराहना कीजिए श्रोताओं, किसी सहकर्मी के अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए।
0: हाँ,
1: या घर में किसी सदस्य के प्रयास को सम्मान दीजिए। हम देखेंगे कि वो व्यक्ति पहले से और अधिक उत्साह के साथ काम करेगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ सुझाव दे, लेकिन जहाँ अच्छाई दिखे वहाँ खुलकर प्रशंसा भी करें। हर व्यक्ति का अनुभव, परिवेश और सोच अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जो हमें सही लगे वही हर किसी के लिए सही हो। मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मतभेद को कमी समझ लेना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीख जाते हैं तब हमारा व्यक्तित्व और भी परिपक्व बन जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में श्रोता साथियों, हमें टीम वर्क में गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई सामाजिक कार्य हो, हर जगह टीम वर्क की तो आवश्यकता होती ही है जागृति जी। एक अच्छी टीम वही होती है जहां लोग एक दूसरे की कमियों पर नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। जब हर सदस्य की ताकत को साथियों पहचाना जाता है तब सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, कई बार हमें किसी की गलती दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी परिस्थिति भी हम नहीं देखते। हो सकता है कि वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहा हो या किसी कठिन दौर में हो। यदि हम उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी सोच में संवेदनशीलता आएगी और साथ ही सहानुभूति जो है वो हमें बेहतर इंसान बनाएगी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी के अंदर कमियां नहीं देखनी है, ये बातें ऐसी ही आगे चलती रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि हमें किसी के अंदर कमियों को नहीं देखना चाहिए, जैसा कि श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग हर परिस्थिति में अच्छाई खोज लेते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे लोग अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। जीवन में खुश रहने का एक आसान तरीका यही है कि कमियों के साथ साथ अच्छाइयों को भी देखने की आदत हमें विकसित करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ कमियां जरूर होती है और कुछ खूबियां भी होती है। अगर हम केवल कमियां ही देखते रहेंगे तो अच्छे रिश्ते, अच्छी टीम और अच्छा समाज कभी नहीं बना पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अगर हम अच्छाइयों को पहचानेंगे, कशिश, लोगों को सुधारने का अवसर देंगे, उनकी परिस्थितियों को समझेंगे और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे, तो न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरेगा बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर बनेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जैसा कि सोशल मीडिया के दौर में लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपनी कमियां गिनने लगते हैं, लेकिन जागृति जी, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करने से श्रोता साथियों आत्मविश्वास घटता है, जबकि प्रेरणा लेने से आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा साथियों को अपनी क्षमता को पहचान कर जागृति जी स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों को ही प्रशंसा के पात्र मानते हैं, जबकि किसी के समय पर काम करना, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाना, दूसरों की मदद करना या मुस्कुराकर बात करना भी बड़ी अच्छाइयां होती हैं। जब हम छोटी अच्छाइयों को महत्व देंगे साथियों, तो समाज में सकारात्मकता बढ़ेगी।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की प्रगति केवल कमियां खोजने से नहीं बल्कि अच्छाइयों को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने से होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन महान तो वही बनता है जो दूसरों की कमजोरियों पर नहीं, उनकी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास करता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम आलोचना के स्थान पर सहयोग, निराशा के स्थान पर प्रेरणा और दोष देखने के बजाय गुणों को अपनाने की आदत विकसित करेंगे, तो परिवार में प्रेम, समाज में सौहार्द और राष्ट्र में विकास का वातावरण अपने आप ही निर्मित होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, किसी की कमियों का उपहास हमें नहीं उड़ाना है, बल्कि उसकी अच्छाइयों को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का अवसर देना है। क्योंकि दुनिया बदलने की शुरुआत दूसरों की कमियां गिनने से नहीं हुई है, बल्कि उनकी खूबियों को सम्मान देने से होती है। और यही सकारात्मक सोच, सच्ची मानवता और एक सशक्त, संवेदनशील तथा विकसित भारत की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि कई बार हम किसी व्यक्ति के पहनावे, भाषा या फिर आर्थिक स्थिति को देखकर और पहली मुलाकात के आधार पर ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। यह पूर्वाग्रह श्रोता साथियों हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। ऐसे में किसी को समझने के लिए समय दे और उसके व्यवहार को आप जाने।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हर व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, तो कोई सफाई कर्मी। हर व्यक्ति साथियों अपने अपने क्षेत्र में समाज के विकास में योगदान देता है।
0: जी हाँ।
1: यदि केवल हम कमियां देखेंगे जागृति जी, तो उनके योगदान का सम्मान करना हम भूल जाएंगे। साथियों याद रखिए कि जहां लोगों की मेहनत की सराहना होती है, वहां नए विचार जन्म लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और लोग खुलकर काम करते हैं। ऐसे में परिवार, विद्यालय, कॉलेज और कार्यस्थल पर ऐसा वातावरण बनाना हमारे युवा साथियों की ही जिम्मेदारी बनती है।
0: जी हाँ कशिश, और इससे ये स्पष्ट भी हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र की उन्नति केवल कमियां खोजने से नहीं बल्कि अच्छाइयों को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और कमियों को मिलकर दूर करने से होती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है, वो न केवल अपने रिश्तों में दूरी पैदा करता है बल्कि स्वयं भी नकारात्मकता का शिकार हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: इसके विपरीत श्रोता साथियों, जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को पहचानता है, उनकी सराहना करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रेम पूर्वक उनकी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में समाज का निर्माता बनता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की संस्कृति ने लोगों को आलोचना करने में तेज और प्रशंसा करने में संकोच बना दिया है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में कशिश, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अगर हम अपने परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में लोगों की अच्छाइयों को देखने और उन्हें आगे बढ़ाने की आदत विकसित कर लेंगे श्रोताओं, तो विश्वास, सहयोग, आत्मीयता और आपसी सम्मान का वातावरण अपने आप निर्मित होगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था।
1: बिल्कुल,
0: और यही वातावरण स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: जी हाँ जागृति जी, हमारे युवा साथियों को ये ध्यान में रखना है कि हीरे की पहचान उसकी चमक से होती है साथियों, न कि उसकी धूल से।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है, यदि हम केवल कमियां देखते रहेंगे दोस्तों, तो अच्छे इंसानों को भी हम खो देंगे। लेकिन यदि हम अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और कमियों को सुधारने में सहयोग देंगे, तो हम न केवल बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी करेंगे।
0: जी हाँ,
1: आज से श्रोता साथियों, आप सभी मिलकर ये संकल्प लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी एक गलती से नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व, उसके प्रयास और उसकी अच्छाइयों से पहचानेंगे। यही सोच हमारे जीवन, रिश्तों और समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। जागृति जी,
0: बिल्कुल, कशिश, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आप स्वयं वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसीलिए श्रोताओं, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा हमें स्वयं से करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: जब हम दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने व्यवहार का आत्म मंथन करेंगे, तब हमारे शब्दों में मधुरता होगी, विचारों में सकारात्मकता होगी और कर्मों में संवेदनशीलता दिखाई देगी।
1: बिल्कुल,
0: यही सच्चे चरित्र, श्रेष्ठ नागरिकता और मानवता की पहचान है। इसीलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि जो समाज कमियां गिनने के बजाय खूबियां पहचानना सीख जाता है, वही समाज प्रगति, सद्भाव और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए, कमियां निकालना आसान है लेकिन खूबियां पहचानना महानता है।
1: जी हाँ,
0: जो दूसरों में अच्छाई खोज लेता है कशिश, वही स्वयं भी महान बन जाता है और वही एक बेहतर समाज तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण का वास्तविक आधार बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर सुनवाते हैं साथियों को एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है, बच्चों को सही बैठने और चलने की आदत क्यों सिखानी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अक्सर हम बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और खानपान पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके बैठने, खड़े होने और चलने का तरीका भी उनके शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बचपन वह समय है जब शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और रीढ़ की हड्डी लगातार विकसित हो रही होती है। यदि इस समय बच्चों की बैठने की या चलने की आदत गलत हो जाए तो आगे चलकर कमर दर्द, गर्दन दर्द, झुके हुए कंधे, रीढ़ की समस्या और थकान जैसी परेशानी सामने आ सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा।

0: मेहमान। श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, बच्चों को सही बैठने और चलने की आदत क्यों सिखानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में मोबाइल, टीवी और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चे लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। कई बच्चे पढ़ते समय झुक कर बैठते हैं तो गर्दन नीचे करके मोबाइल भी देखते हैं। और साथ ही श्रोता साथियों, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुर्सी पर गलत तरीके से बैठते हैं। शुरुआत में तो श्रोता साथियों ये बात बहुत ही सामान्य लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत शरीर की बनावट और स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है।
1: जी हाँ, यही बात करें कशिश कि सही मुद्रा में बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है और शरीर का संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इससे बच्चा पढ़ाई के समय अधिक देर तक बिना थके ध्यान लगा सकता है। वहीं गलत मुद्रा में बैठने से श्रोता साथियों कमर दर्द और कंधों में दर्द, जल्दी थकान, एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ कशिश, चलने की सही आदत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब बच्चा सीधे शरीर के साथ संतुलित कदमों से चलता है तो उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सही तरीके से विकसित होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: सही चाल आत्मविश्वास भी बढ़ाती है और इसके विपरीत झुककर चलना, पैरों को घसीटना या शरीर का संतुलन बिगाड़कर चलना आगे चलकर शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के लिए पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था करें जहां मेज और कुर्सी की ऊंचाई बच्चों के अनुसार हो। यदि बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ता है तो उसके बैठने की मुद्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। लगातार एक ही स्थिति में बैठने की बजाय हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा चलना, खिंचाव वाले हल्के व्यायाम करना और शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो इसमें विद्यालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिक्षक समय समय पर बच्चों को सही तरीके से बैठने, स्कूल बैग दोनों कंधों पर टांगने, चलते समय शरीर सीधा रखने और खेलकूद के महत्व के बारे में समझा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: छोटी छोटी आदतें भविष्य में बड़े लाभ देती है साथियों। ऐसे में अंजलि जी, माता पिता को बच्चों को नियमित योग, स्ट्रेचिंग और हल्की शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन जैसे जो सरल योगासन होते हैं वो रोजाना बच्चों को करवाने चाहिए। साथ ही रोजाना खुलकर खेलना शरीर की मुद्रा को बेहतर बनाने में बच्चों की मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, बच्चों का स्क्रीन टाइम आप सीमित रखें, क्योंकि लंबे समय तक मोबाइल या फिर टेबलेट देखने से गर्दन और पीठ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अंजलि जी, यदि माता पिता स्वयं सही तरीके से बैठते हैं, चलते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से वही आदतें अपनाएंगे।
1: जी हाँ। यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगी कि सही बैठने और चलने की आदत केवल अच्छे शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बच्चों के स्वस्थ शरीर, मजबूत आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की आधारशिला भी है।
0: बिल्कुल।
1: बचपन में सीखी गई ये छोटी सी आदत श्रोता साथियों उन्हें जीवन भर स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि हम श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि बच्चों के सही बैठने की मुद्रा पर हमें किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चों का स्वस्थ भविष्य केवल अच्छे भोजन, अच्छी शिक्षा और नियमित खेल कूद से नहीं बनता, बल्कि उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से भी बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही तरीके से बैठना, खड़े होना और चलना ऐसी ही आदतें हैं जो देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन इनका प्रभाव जीवन भर दिखाई देता है।
1: जी हाँ।
0: यदि बचपन में शरीर को सही मुद्रा में रखने की आदत विकसित हो जाए तो आगे चलकर कई शारीरिक समस्याओं से बचाव संभव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और बच्चा अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और स्वस्थ जीवन जी सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी। साथी श्रोता साथियों, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि सही मुद्रा केवल शरीर की सुंदरता के लिए नहीं बल्कि शरीर के संतुलित विकास के लिए भी जरूरी है। जब बच्चा सही तरीके से बैठता है तो उसकी रीढ़, गर्दन, कंधे और मांसपेशियां अनावश्यक दबाव से बची रहती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे वह पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में अधिक ध्यान लगा पाता है। दोस्तों, जल्दी थकता भी नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि गलत आदतें धीरे धीरे शरीर पर ऐसा असर डाल सकती है जिसका पता बच्चों को कई वर्षों बाद पता चलता है।
0: जी जी।
1: इसलिए अंजलि जी, समय रहते ही सही आदतें सिखाना भी सबसे बड़ा बचाव हो सकता है बच्चों के लिए।
0: बिल्कुल कशिश, आज के डिजिटल दौर में यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर का बढ़ता उपयोग बच्चों की बैठने की आदत को प्रभावित कर रहा है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, परिवार और विद्यालय दोनों मिलकर बच्चों को यह समझाना होगा कि तकनीक का उपयोग करें लेकिन अपने शरीर की देखभाल को कभी न भूलें।
1: बिल्कुल।
0: पढ़ाई के बीच छोटे छोटे विराम लेना, नियमित व्यायाम करना, खुलकर खेलना और सही मुद्रा में बैठने का अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई में अच्छे अंक लाना।
1: जी हाँ।
0: माता पिता और शिक्षक यदि बच्चों को बार बार टोकने के बजाय कशिश प्यार से समझाएं, स्वयं सही उदाहरण प्रस्तुत करें और अच्छी आदतों की सराहना करें तो बच्चे इन्हें सहज रूप से अपना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए कि बचपन में सीखी गई अच्छी आदतें किसी पाठ्य पुस्तक के अध्याय की तरह नहीं होती।

0: युवा और जागरूक समाज की सबसे मजबूत पहचान होती है।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से साथियों को कहना चाहेंगे कि दोस्तों, बच्चों का व्यक्तित्व केवल उनके ज्ञान, प्रतिभा या अंकों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनकी जीवन शैली, आत्मविश्वास और स्वस्थ आदतों से भी पहचाना जाता है। सही बैठने और चलने की आदत ऐसी एक अनमोल सीख है अंजलि जी, जो बच्चे को बचपन से ही अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाती है।
0: जी हाँ,
1: यह आदत उसे यह समझाती है कि शरीर की देखभाल किसी बीमारी के बाद नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी सावधानियों से शुरू होती है। जब बच्चा सही मुद्रा में बैठना और चलना सीखता है साथियों, तो उसके भीतर अनुशासन, सजगता और आत्मसम्मान का भी विकास होता है।
0: बिल्कुल,
1: वह अपने शरीर की जरूरतों को समझने लगता है और धीरे धीरे ऐसी जीवन शैली अपनाता है जो उसे लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखती है। यही आदत श्रोता साथियों आगे चलकर खेल, पढ़ाई, नौकरी और दैनिक जीवन में उसकी कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाती है।
0: जी जी,
1: स्वस्थ शरीर में ही आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक सोच का विकास होता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को केवल यह न बताएं कि क्या सही है, बल्कि उन्हें यह भी समझाएं कि सही आदतों का महत्व क्या है।
1: बिल्कुल,
0: यदि घर में माता पिता, दादा दादी और विद्यालय में शिक्षक स्वयं शारीरिक मुद्रा अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और बच्चों को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें, तो बच्चे बिना किसी दबाव के इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: सीख वही सबसे गहरी होती है जो व्यवहार में दिखाई देती है। श्रोता साथियों, हम मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चों को स्वस्थ रहने की शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि घर, विद्यालय और समाज के व्यवहार में भी मिले।
1: जी हाँ,
0: खुलकर खेलने का अवसर दें, स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाला समय सीमित करें, नियमित योग व्यायाम के प्रति प्रेरित करें और हर दिन यह याद दिलाएं कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: बचपन में डाली गई अच्छी आदत आने वाले पूरे जीवन का आधार बन सकती है। यदि कशिश, आज हम बच्चों को सही बैठना, सही चलना और अपने शरीर का सम्मान करना सिखा देंगे, तो कल वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक सक्षम बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी, जागरूक पीढ़ी का निर्माण किसी बड़े अभियान से नहीं, बल्कि घर परिवार में सिखाई गई ऐसी छोटी छोटी आदतों से बनता है। श्रोता साथियों, यही आदतें आगे चलकर उन्हें जीवन की हर राह पर मजबूती, संतुलन और सफलता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु घणेमान स्वागत कर हूं हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के किसान भाई बहनों अमे हमारे टाइम माते हाजिर थी गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो किसान भाई बहन आज हमारी आप तक की बातचीत नु विषय है कि आपड़े क्षेत्र में निराई गुड़ाई हरते कर ने अपने जीवन में अपने हलमा ने महत्व ने हरते समझी शक। तो किसान भाई बोन अणो विषय माते अमारी आप तक की कार्यक्रम खेतीवाड़ी में घना कानी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी वाते। तो किसान भाई बोन आप हमबरते रेजू अपनो रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

किसान भाई बोनो अड़स गिथाते कार्यक्रम खेतीवाड़ी तकी पड़स उठ। आशा कर रहा कि आज के कार्यक्रम में हमारी अब तक की जी भी बातें रही है ये बातें आपने गमी होंगा। तो किसान भाई बोनो आपने अमारो आज ना कार्यक्रम केव लगू एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमारे अणप पता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM गांव पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिनकोड नंबर है 3270001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी सको अमारे अणप फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक नाविशने हाते तारुधी राम राम राम राम।

0: सेहत नु राज हूं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जागृति बुन आप कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
6: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
5: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
6: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी तो किस आपड़ो जीवन है।
5: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
6: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
5: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है। हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
8: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
7: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विषय है गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल है। श्रोताओं, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन की कहानी लिखते हैं।
0: जी हाँ
1: अंजलि, यही बात गाँव के विकास पर पूरी तरह से लागू होती है। किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसके गांव में बसती है। अगर गांव जागरूक, आत्मनिर्भर और संगठित होंगे तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। परिवर्तन हमेशा किसी बड़ी योजना या भारी निवेश से नहीं आता, बल्कि कई बार एक छोटी सी शुरुआत पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देती है। दोस्तों, एक व्यक्ति का सकारात्मक कदम, कुछ युवाओं का सहयोग, महिलाओं का आत्मविश्वास या बच्चों की जागरूकता पूरे समाज में नई ऊर्जा का संचार करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ।
0: और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, हमारा भारत देश गाँव का देश है। आज भी करोड़ों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अगर प्रत्येक गांव अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने का प्रयास करेगा और छोटी छोटी पहलों को जन आंदोलन बना दे तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि आज गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल केवल एक विषय नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य की दिशा है।
1: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि गाँव में एक परिवार स्वच्छता अपनाए तो धीरे धीरे पूरा मोहल्ला प्रेरित होता है। यदि एक किसान नई तकनीक अपनाता है तो अन्य किसान भी उससे सीखते हैं। यदि एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाती है तो अनेक महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसका मतलब है श्रोता साथियों कि छोटी पहल इसलिए प्रभावी होती है क्योंकि उसमें लोगों की भागीदारी होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब लोग स्वयं परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं तब विकास स्थायी बनता है।
0: जी हाँ अंजलि, कई गाँव में लोगों ने ये केवल संकल्प लिया है कि वे अपने घरों और गलियों में कचरा नहीं फैलाएंगे। शुरुआत कुछ लोगों ने की लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव स्वच्छता अभियान से जुड़ गया।
1: जी जी।
0: इसके परिणाम स्वरूप श्रोता साथियों, गाँव में बीमारियां कम हुई, साफ वातावरण बना, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा, गाँव की सुंदरता बढ़ी, बाहर से आने वाले लोग भी प्रभावित हुए।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी सी आदत ने पूरे गाँव की पहचानी बदल दी।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने है।
0: बिल्कुल,
1: कई गांवों में लोगों ने वर्षा जल संग्रहण, तालाबों की सफाई, चेक डैम निर्माण और पुराने कुओं के संरक्षण की शुरुआत की। शुरुआत में यह कार्य सभी को छोटा लगा।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कुछ वर्षों बाद सभी ने देखा कि बदलाव आया। भूजल का स्तर बढ़ा, किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिली, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध हो पाया, खेत की पैदावार बढ़ी और पलायन कम हुआ। श्रोता साथियों, यह सब हमें दिखाता है कि पानी बचाने की छोटी पहल पूरे गांव का भविष्य बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं जागृति जी कि कई ग्रामीण महिलाओं ने मिलकर छोटी बचत शुरू की है। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा की और स्वयं सहायता समूह बनाया। समय के साथ श्रोता साथियों, महिलाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, सिलाई, डेयरी, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प का काम बढ़ा, परिवार की आय भी बढ़ी और जागृति जी, महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत हुआ।
0: जी हाँ।
1: बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आया। एक छोटी सी बचत ने पूरे परिवार और समाज में आर्थिक बदलाव ला दिया।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ हमारी श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज का युवा गांव की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कुछ युवा मिलकर पुस्तकालय शुरू करें, खेल प्रतियोगिता आयोजित करें, डिजिटल शिक्षा दे या नशा मुक्ति अभियान चलाए तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: युवा आजकल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बुजुर्गों की सहायता कर सकते हैं, डिजिटल सेवाओं की जानकारी दे सकते हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण अभियान भी चला सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे युवाओं की छोटी पहल भविष्य की बड़ी उपलब्धि बन सकती है।
1: जी हाँ, यदि गाँव के कुछ शिक्षित लोग भी जागृति जी प्रतिदिन एक घंटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं तो अनेक बच्चों का भविष्य बदल सकता है। ऐसी पहल से हम देखेंगे कि शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा, विद्यालय छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या घटेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि ज्ञान का छोटा दीपक भी पूरे गाँव को रोशन कर सकता है। इसी के साथ जैविक खेती और नवाचार बढ़ेगा। श्रोता साथियों, कुछ किसानों ने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया है।
0: बिल्कुल,
1: प्रारंभ में लोगों को संदेह था लेकिन धीरे धीरे अच्छे परिणाम सामने आए। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी, उत्पादन की गुणवत्ता सुधरी, किसानों को जागृति जी बेहतर मूल्य मिलने लगा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हुआ और पर्यावरण सुरक्षित रहा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसान की पहल ने पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल बन सकती है, ये बातें निरंतर हमारे आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं और गीत से पहले हमने जाना कि गांव की छोटी पहल किस तरीके से बड़े बदलाव की मिसाल बन सकती है। इसमें हम जान पाए जागृति जी, स्वच्छता के बदलाव की शुरुआत, जल संरक्षण की छोटी पहल, साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह की शक्ति, युवाओं की सकारात्मक उसमें भूमिका, शिक्षा के क्षेत्र में छोटी शुरुआत, जैविक खेती और नवाचार को लेकर। यहीं अब बात करें डिजिटल गांव की ओर कदम की, तो श्रोता साथियों, आज डिजिटल तकनीक ग्रामीण विकास का नया माध्यम बन रही है। यदि गांव में ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन की शुरुआत हो जाए तो लोगों का समय और धन दोनों बचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल जागरूकता ग्रामीण जीवन को सरल और आधुनिक बना रही है।
1: जी हाँ अंजलि, गांव तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। श्रोताओं, सामूहिक प्रयासों से ही हम कार्य को

0: ता पौधा भविष्य का विशाल वृक्ष बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ गांव के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक रहने की जरूरत है। गांव में यदि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, टीकाकरण, पोषण, योग को अपनाएं तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हर गांव में कुछ विशेष संसाधन होते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, वन उत्पाद, पारंपरिक कला। यदि जागृति जी ने सही दिशा मिले तो रोजगार बढ़ता है, पलायन कम होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, कल्पना कीजिए कि कैसे गांव की जहां कुछ युवाओं ने ये निश्चय कर लिया हो कि वे हर रविवार को 2 घंटे श्रमदान करेंगे। शुरुआत में केवल 10 लोग आए, उन्होंने गांव के तालाब की सफाई की, पौधे लगाए और बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाया।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर स्थानीय उत्पाद तैयार किया, किसानों ने वर्षा जल संरक्षण और जैविक खेती अपनाई। कुछ वर्षों में वही गाँव स्वच्छ, हरित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बन गया। आसपास के गांव उसके अनुभव से सीखने लगे। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि निरंतर छोटे प्रयासों से आता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अभी हमने आपको कहा था कि अगर हम कल्पना भी करते हैं ऐसे गांव की, तो हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। और जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो हम आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि हमारा गांव कितना अच्छा बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: छोटी पहलों के सामने चुनौतियां बहुत सारी आती हैं। कोई भी कार्य करने जाते हैं, उस कार्य को करने से पहले चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है।
1: जी जी।
0: लेकिन दोस्तों, उन चुनौतियों को पार करते हुए हम किसी कार्य को कर लेते हैं तो वो हमें और ज्यादा खुशी देता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम छोटी छोटी कोई पहल कर रहे हैं, उसके लिए हमें लोगों की उदासीनता देखनी पड़ती है, आर्थिक संसाधनों की कमी भी हमारे पास होती है, जागरूकता का अभाव भी रहता है, हम लोगों को इतना जागरूक नहीं कर पाते, समझा भी नहीं पाते हैं, नई सोच का लोग हमसे विरोध भी करते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी का भी हमारे सामने अभाव रहता है और साथ में युवाओं का पलायन। इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक सहयोग, सकारात्मक नेतृत्व और निरंतर प्रयासों से ही संभव है।
1: बिल्कुल जागृति जी, युवाओं को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं हैं, बल्कि समाज बदलने वाले भी बन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर युवा अपने गांव के लिए वर्ष में कुछ दिन भी सेवा करे तो विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है। युवा को सिर्फ इतना ही करना है कि एक पौधा लगाएं, एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एक परिवार को डिजिटल बना सकते हैं, एक जल स्रोत बचा सकते हैं, एक व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही छोटे कार्य जागृति जी बड़े बदलाव का आधार बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, महात्मा गांधी का स्वराज जो है उसका सपना तभी साकार होगा जब गांव अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजेंगे। आत्मनिर्भरता, सहयोग, स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व, ये सभी छोटी छोटी पहले मिलकर सच्चे स्वराज की मजबूत नींव बनाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव अपने संसाधनों का सम्मान करेंगे जागृति जी, अपनी संस्कृति को सहेजेंगे और आधुनिक सोच को अपनाएंगे, तभी वास्तविक विकास संभव होगा।
0: जी अंजलि, परिवर्तन किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वो निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, गाँव की एक साफ गली, एक बचाया हुआ तालाब, एक लगाया गया पौधा, एक शिक्षित बच्चा, एक आत्मनिर्भर महिला, एक जागरूक किसान और एक जिम्मेदार युवा, ये सभी मिलकर अंजलि विकास की ऐसी कहानी लिखते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज आवश्यकता किसी चमत्कार की नहीं दोस्तों, बल्कि जागरूक नागरिकों की है। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि वो अपने गांव के लिए प्रतिदिन एक छोटा सा सकारात्मक कार्य करेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का हर गांव आत्मनिर्भर, शिक्षित, स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त होगा।
1: जी हाँ,
0: यही छोटे प्रयास बड़े बदलाव की सबसे सुंदर मिसाल बनेंगे और यही सच्चे अर्थों में विकसित भारत तथा सच्चे स्वराज की और हमारा सबसे मजबूत कदम होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, कह सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि अपने गांव की छोटी पहल से होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर हाथ जिम्मेदारी उठाता है, जब हर गांव विकास की नई इबारत लिखता है और वही इबारत आगे चलकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, हमारे श्रोता साथियों को हमने बताया कि किस तरह गांव की छोटी पहल बड़े बदलाव की मिसाल बनती है।
1: जी जी,
0: आप देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावरी अमर हित बुने ने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम होवी बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूं हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में
1: होवे बोनो लेने हाजिर थी गयो हूं कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज आपड़े बोनो तक की कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है कि आपड़ी बोनो नी आवाज घर तक लेने ग्राम सभा उदी हरते ई उगाड़ी सके केम के आपड़े देखो हूं कि हर घर में आपड़ी जे बोने रहे हैं ई परिवार नी हित्ती जरूरत तक ही जोड़ी तक ही रहे हैं ईश्वरनी शिक्षा परिवार ना स्वास्थ्य पानी नी समस्या स्वच्छता पोषण खेती पशुपालन ने घर में खर्च हरते करवो है ई हंगरी जिम्मेदारी ई निभावे है पण जई वक्त गांव ना विकास नी योजना नी वात आवे ते एना नी जे आवाज है ई उठली मजबूती तकी हमराती नती आज सवाल आपड़ा ने आ होसवा में मजबूर करे है कि आपड़ी जे बोने ही एना नी आवाज केवल घर नी चार दीवारी में सनी बल्कि आपड़े ग्राम सभा उदी आपड़े हरते पुगाड़ो ने आ केम जरूरी है
0: होवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपड़े बोने खती घणा काने वाते रिंगा अबर हमड़ा आगीत ने मोरे कर आपड़ी वाती
1: होवे तो बोनो आप हमर तो रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारा सा विषय हमारे साथ जुड़ता है। तो आज भी कार्यक्रम में हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। आज हम बात करेंगे लक्ष्य तय करने की कला को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है। हर किसी के मन में कोई न कोई सपना भी जरूर होता है। कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है साथियों, तो कोई डॉक्टर, तो कोई खिलाड़ी, तो कोई समाज में कुछ नया करने का सपना देखता है। लेकिन श्रोता साथियों, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या केवल सपना देखना ही काफी है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। लेकिन श्रोता साथियों, सच तो यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक सही दिशा की जरूरत होती है, और वह दिशा हमें मिलती है लक्ष्य तय करने से। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे लक्ष्य तय करने की कला के बारे में। तो साथियों, बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं हम कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू करा दिया था और बातचीत की हमारी शुरुआत हो गई थी। हर किसी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और हर कोई जीवन में कुछ बनना चाहता है। तो यही सबसे पहले हम जानते हैं कि लक्ष्य क्यों जरूरी है। साथियों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो उसका जीवन बिना दिशा के होता है। जरा सोचिएगा श्रोता साथियों, कि अगर कोई यात्री यात्रा पर निकले और अगर उसे पता ही न हो कि उसे कहाँ जाना है, तो वह रास्ते में ही भटक जाएगा। उसी तरह अगर इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं होता, तो उसकी मेहनत भी बिखर जाती है। लक्ष्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने समय, ऊर्जा और मेहनत को किस दिशा में लगाना है। जब हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हमारा मन और हमारी मेहनत उसी दिशा में लगने लगती है। और हम देखते हैं कि आज के समय में युवाओं के सामने कई अवसर भी हैं और कई चुनौतियां भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि युवा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सी बार उनके साथ ये होता है कि आखिरकार उन्हें जीवन में करना क्या है। वो मेहनत कहीं और कर रहे होते हैं और उन्हें जीवन पाना कुछ और होता है। ऐसी स्थिति में उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं लग पाती। इसलिए युवाओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब लक्ष्य तय होता है ना श्रोता साथियों, तो पढ़ाई, मेहनत और प्रयास भी उसी दिशा में होने लगते हैं और वो अच्छे से भी हो पाते हैं। अब बात आती है कि लक्ष्य तय करने का सही तरीका आखिरकार है क्या। तो साथियों, लक्ष्य तय करते समय कुछ बातों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि हम लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हों। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे जीवन में सफल होना है, तो यह एक इच्छा है, लेकिन यह स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। लेकिन श्रोता साथियों, कोई कहे कि मुझे अच्छा शिक्षक बनना है या फिर मुझे एक सफल उद्यमी बनना है, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। दूसरी बात यह है कि लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। हमें ऐसा लक्ष्य चुनना चाहिए जिसे मेहनत और धैर्य के साथ हासिल किया जा सके। बहुत सी बार हम ऐसे लक्ष्य को चुन लेते हैं जिसे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और वो हमारी पहुंच से भी बहुत दूर होता है। तो हमें हमेशा उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है जो हम पा सकते हैं, और उसमें हम मेहनत और धैर्य और पूरी लगन के साथ कार्य करें ताकि वह लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। तो साथियों, ये बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही हैं कि किस तरीके से लक्ष्य हमारे लिए जरूरी है, युवाओं के लिए लक्ष्य का क्या महत्व है और लक्ष्य तय करने का सही तरीका क्या है। आगे भी इस विषय पर हमारी आपसे कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम का दस्तूर है कि बीच बीच में भी हम मनोरंजन के लिए आपको गीत सुनवाते हैं। तो आज भी साथियों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, और ये जो बातें हमारी आपसे कार्यक्रम में चल रही है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अक्सर हम हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में बहुत कुछ करे, लेकिन हमेशा हमारे साथ ये होता है कि हम कभी भी हमारा अच्छे से लक्ष्य भी तय नहीं कर पाते, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं हमें बनानी होती है वो भी हम नहीं बनाते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, बीच में हमें क्या करना है, उसका अंत क्या होगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम हमारे लक्ष्य से और पीछे हटते जाते हैं। तो साथियों, यही अब हम बात करते हैं कि छोटे लक्ष्यों की ताकत क्या है। जी हाँ, कई बार लोग बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं लेकिन उसे पाने का रास्ता तय नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटा जाए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं श्रोता साथियों, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि अगर किसी छात्र का लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो उसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। इस तरह छोटे कदम ही हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। साथियों, केवल लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य भी जरूरी होती है। रास्ते में कई बार कठिनाइयां भी आएंगी, कई बार असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य मजबूत है ना दोस्तों, और हमारे मन में विश्वास है, तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, और यही धैर्य और मेहनत हमें सफलता की ओर भी ले जाती है। तो साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कई महान लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितियों से की है, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करते रहे। इसी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है दोस्तों। यह हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट है

बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहूंगी। आशा करूंगी कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए प्यारे से प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़े ने आपड़े में देखाए तो आपड़े ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।